यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा नमस्कार।
1: नमस्कार नीतू शाह, सभी को नमस्कार। देश में दो बेहद अशांत रातों के बाद पूरे देश में शांति लौटती दिखाई दे रही है। कम से कम आधिकारिक तौर पर कल रात किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली। कर्फ्यू कल रात भी लागू रहा और आज भी रात 8:30 बजे से कल सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दो अन्य इलाकों में भी कर्फ्यू लागू किया गया है, कौचे मिलिते और सैंपियर में। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने माता पिता और बड़े बुजुर्गों से अपील की है कि वे सुनिश्चित करें कि नाबालिग लोग कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। अपराध किए जाने की स्थिति में नाबालिगों की कानूनी उम्र पर गौर करने का एक प्रस्ताव आज मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उन मॉरिशनों को धन्यवाद दिया जिन्होंने कर्फ्यू का पालन किया। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करने वाले लोगों और विभिन्न इलाकों में पुलिस की सहायता करने वालों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और SMF अधिक सख्ती से कार्रवाई करेंगे, लेकिन हर परिस्थिति में विवेक और सूझबूझ के साथ निर्णय लिया जाएगा। मॉरिशस में हुई हिंसा और नशीले पदार्थों की तस्करी के बीच संभावित संबंधों पर जांच की जा रही है। साथ ही ये भी समझने का प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं किस तरह युवाओं को तस्करी के जाल में धकेल सकती हैं। सुरक्षा स्थिति के कारण स्कूल और शिक्षण संस्थान 15 और 16 अक्टूबर को बंद रहेंगे, लेकिन कैम्ब्रिज की परीक्षाएं देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना आज, जो प्रेम ममता और करुणा तथा मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। विदेश में यूक्रेन के कुछ हथियारों की गति और स्पेस एक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क से उनके जुड़े रहने की क्षमता पर लगाई गई पाबंदियों के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ हो सकता है, ऐसा एलन मस्क का कहना है। और अब मौसम की रिपोर्ट। मस्कलिंस्क के दक्षिण में स्थित एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर कुछ तेज हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि मौसम को बादल की तरफ बादल भी आज रात को मौसम को प्रभावित करेंगे। सुबह के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे जो कभी

0: आभार घने हो जाएंगे, खासकर पूर्व दक्षिण एवं ऊंचाइयों पर और जहां तहां बारिश हो सकती है। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन रात के दौरान आसमान में बादल घेर आएंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 5:39 पर, सूर्यास्त होगा 6:11 पर। पूरा बुलेटिन 6:30, तब तक के लिए अनुमति दे, नमस्कार।
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 98.2 यू आर लिसनिंग योर RM3 रेडियो।

हज़रत अब्बाद बिन तमीम रहमहुल्ला अपने चचा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारिश तलब करने के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला रुख होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, फिर अपनी चादर को उलट लिया और दो रकात नमाज अदा फरमाई। उन दोनों रकातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से कुरान करीम की तिलावत फरमाई। इस हदीस में नमाज इस्तिस्का का तरीका बयान हुआ। जब इलाके में बारिश न हो और खश्क साली पैदा हो जाए तो मुसलमानों को अपने इमाम और दीनी रहनुमाओं की रहनुमाई में नमाज इस्तिस्का का अहतमाम करना चाहिए। इस नमाज के ज़रिए बंदे अपनी मोहताजी का इजहार करते और अल्लाह ताला से बारान रहमत तलब करते हैं। चादर को उलटना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और उसे अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद और हालत की तब्दीली की अलामत समझा जाता है।

मोहतरम सामीन, हमें याद रखना चाहिए कि बारिश अल्लाह ताला की रहमत है। जब बारिश न हो तो सिर्फ परेशान होने या दूसरों को इल्ज़ाम देने के बजाय अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों से तौबा करें और नमाज व दुआ का एहतमाम करें। अगर हमारे इलाके में खश्क साली हो तो मस्जिद के इमाम, उलमा और दूसरे मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज इस्तिस्का और इज्तिमाई दुआ का इंतज़ाम करें। अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस न हों। सामीन कराम, सबर खैर प्रोग्राम करीब ख़त्म होने वाला है। आइए आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इंशाल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

श्रोता मित्रों, देवी माना नवे नव रूपनी पूजा आपणे नवरात्रि दरमियान करवामां आवे छे अने ते साथे ज घणा लोको एवुं पण माने छे कि कुष्मांडा मानी पूजा आजना दिवसे थाय छे। भक्तोने शक्ति समृद्धि अने लांबा आयुष्यनुं आशीर्वाद प्राप्त थाय छे अने ते साथे ज अत्यारे शारदीय नवरात्र देवी दुर्गाना स्वरूपने ब्रह्मांडना प्रमुख देवी मानवामां आवे छे, जेमणे पोताना स्मित अने ऊर्जाथी ब्रह्मांडनुं सर्जन कर्युं छे अने सुख समृद्धि आरोग्य प्राप्त करवा माटे आपणे देवी दुर्गानी शक्तिओनी आराधना करीए छे अने आ शक्ति सौ कोईना भीतरमां समायेली छे।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.

भक्ति में शक्ति। नमस्कार श्रोताओं, आशा है आप सभी अपने रेडियो सेट के साथ जुड़ गए होंगे और मेरे साथ तकनीकी सहायक के रूप में शिव जुड़ चुके हैं। श्रोताओं, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। हर रोज़ हम माँ के साथ जुड़े हुए हैं। माँ कितना प्यारा शब्द है ना। अपनी माँ के साथ तो दिन रात जुड़े होते हैं और जब छोटे होते हैं तो उसकी गोदी और उसकी अंगुली छोड़ते ही नहीं हैं, धीरे धीरे अपने पाँव पर खड़े होते हैं। लेकिन श्रोताओं, जो जगत जननी है उसको कैसे छोड़ सकते हैं। वह तो भाव रूप में हमारे भीतर हमेशा रहती हैं। यह जो भाव का अपनापन होता है ना श्रोताओं, ये कहाँ छूटता है। यहाँ तक कि संसार में भी आप यदि विदेश चले जाते हैं या आप माँ से किसी कारणवश दूर होते हैं तो भी आपके भाव जगत में माँ रहती ही है और वह हमेशा आपके हित को सोचती है। लेकिन जो जगत जननी है, जो सभी का भला चाहती हैं, जो राक्षसों को भी इसलिए मारती हैं कि जगत का अन्य समाज जो है वह सुखी हो सके, उनको कैसे हम भुला सकते हैं। श्रोताओं, आज नवरात्रि की पंचमी तिथि है। शारदीय नवरात्रि का पांचवा दिन है और माँ के सभी रूपों में आज जिनकी हम उपासना कर रहे हैं वे हैं माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता मातृत्व की मूर्ति हैं, इसीलिए कार्तिकेय या स्कंद उनकी गोद में होता है। तो भक्त जब स्कंद के रूप में अर्थात समर्पित होकर माँ का हाथ पकड़ लेता है तो माँ उसकी रक्षा करती ही हैं। श्रोताओं, इसीलिए इस दिन जो माँ का रंग कहा गया है या जिन वस्त्रों को हम धारण करते हैं वह शुभ रंग पीला है। आप

सभी को पता है पीला चंदन है, पीले वस्त्र हैं, रंगोली है, इन सब में पीले रंग का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि यह रंग पीले फूलों का, सूर्य का, तेज का, तपस्या का, ब्रह्मचर्य का माना जाता है। तो श्रोताओं, माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। आइए यह सुनते हैं भजन और फिर आगे बढ़ते हैं।

श्रोताओं, तारकासुर नाम का एक राक्षस था, असुर। नाम तो तारक था लेकिन असुर था। बड़ी तपस्या की उसने। इस तपस्या का लाभ तो ये होना चाहिए था कि वह लोगों को तारता, भवसागर से पार कराता, लेकिन वह तो असुर था। ब्रह्मा जी से वर उसने ले ही लिया, और जानते हैं क्या वर लिया? उसने लिया कि केवल शिव का पुत्र ही मुझे मार सकेगा। देखिए, उसने अपनी तरफ से पूरी चालाकी की, क्योंकि वह जानता था कि सती जब योगाग्नि में भस्म हो चुकी हैं, उस समय से शिव गहन समाधि में जा चुके हैं। तो ना तो सती है और शिव समाधि में है, तो पुत्र कहाँ से आएगा? और तारकासुर के अत्याचार बढ़ने लगे। देवताओं की अनुनय विनय को सुनकर पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की, और शिव प्रसन्न भी हुए, उनका विवाह हुआ, और अग्नि देव को अपनी ऊर्जा उन्होंने सौंपी। उसी से कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो यही माँ स्कंद माता कहलाती हैं। तो चलिए सुनते हैं यह।

श्रोताओं, क्योंकि अग्निदेव को ऊर्जा दी थी तो ये बालक बड़ा ही ऊर्जावान था और 6 कृतिकाओं ने इसका पालन पोषण किया था, इसीलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ा और मयूर उसका वाहन था। आप सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और मोर चूहे सांप छोटे छोटे कीड़े इन सबको खा जाता है जो कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कार्तिकेय का वाहन जो मयूर है वह मानो किसानों का मित्र है। तो कार्तिकेय हर मेहनत करने वाले का भगवान के रूप में माने गए और देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया क्योंकि उनमें बहुत अधिक गुण थे। देवी ने स्कंद माता के रूप में अपने पुत्र की शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह की उसे शिक्षा दी, उसे युद्ध कौशल सिखाया। अगर वे युद्ध कौशल न सिखाती तो तारकासुर का वे नष्ट नहीं कर पाते। तो श्रोताओं, तारकासुर का वध कार्तिकेय ने किया। तो आइए माँ देवी का स्तवन सुनते हैं।

जब हम माँ स्कंद माता का चित्र देखते हैं या उनकी मूर्ति देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्कंद उनकी गोद में बैठा है, इसीलिए उनको स्कंद माता कहते हैं। यह देवी दुर्गा का मातृत्व रूप है। जैसे दुर्गा एक सशक्त दुर्ग है, वह महिषासुर जैसे राक्षस की मर्दन कर देती है, लेकिन स्कंद माता मातृत्व का रूप है जिसमें ममता है और उसमें एक अच्छे गुरु के गुण भी हैं।

इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने स्कंद को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी थी। आप यदि स्कंद माता का रूप देखें तो उनकी चार भुजाएं हैं। दो भुजाओं में स्कंद विराजमान है, एक भुजा में कमल है और एक भुजा अपने

श्रोताओं कहते हैं कि माँ स्कंद माता की सच्चे मन से उपासना करने पर विशुद्धि चक्र जागृत होता है, जो हमारी चेतना में शांति पैदा करता है और शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा देता है, और विप्रसाद के रूप में केला, पीले फल, दूध, चावल, केसर की खीर, पीले लड्डू, पीले रंग के फूल, कमल के फूल, यह सब उनको चढ़ाए जाते हैं। और जिसका मूल मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः, अर्थात हमारे भीतर का वात्सल्य संसार को सुख देता है और माँ का वात्सल्य हमारी रक्षा करता है। वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र में माँ बागेश्वरी मंदिर के परिसर में माँ स्कंद माता का मंदिर और मूर्ति स्थापित है, जहाँ पर हर वर्ष पूजा के दिनों में मेला लगता है और लोग माँ स्कंद माता की उपासना करते हैं और उनसे उनकी कृपा मांगते हैं। तो श्रोताओं चलिए इस भजन के साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अलका धनपत को अनुमति दीजिए। शुभ दिन।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से। करुणा जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। देश में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है। कैबिनेट की बैठक में कर्फ्यू लागू करने वाला नया आदेश कल जारी किया गया। इसके तहत आज रात 8:30 बजे से कल सुबह 5 बजे तक फिर से कर्फ्यू लागू रहेगा। पुलिस बलों ने देश भर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी सभी इकाइयों की तैनाती बढ़ा दी है। खास रूप से उन क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत की गई है जहां हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। पुलिस ने सड़क पर नाकेबंदी और वाहनों की जाँच भी तेज कर दी है। पुलिस की साइबर अपराध इकाई सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रख रही है। नफरत फैलाने वाले भाषणों और हिंसा के लिए उकसाने वाली पोस्ट सहित अन्य संबंधित प्रकाशनों के लेखकों के खिलाफ तत्काल जांच की जा रही है। डीपीपी और पुलिस आयुक्त के साथ विचार विमर्श के बाद एक खास व्यवस्था स्थापित की गई। उद्देश्य इन घटनाओं में शामिल आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और उनकी सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाना है। इसके साथ ही पेट्रोल की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नियम भी तैयार किए जा रहे हैं।

दंगों में शामिल नाबालिगों की संख्या को देखते हुए सरकार चिल्ड्रंस एक्ट में संशोधन करने पर विचार करेगी। प्रस्ताव के तहत नाबालिगों को हिरासत में लेने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है। कर्फ्यू के तहत हाल में चलाए गए पुलिस अभियानों के बाद कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक 16 वर्षीय नाबालिग और एक महिला भी शामिल हैं। पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अधिकांश गिरफ्तारियां कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित हैं। 4 लोगों पर दंगा में शामिल होने का संदेह है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक हथियार रखने के आरोप में चालान जारी किया गया। 6 संदिग्धों को हिरासत में रखा गया और उन्हें इस गुरुवार को जिला अदालतों में पेश किया जा रहा है। 2 छोटी घटनाएं भी सामने आई। घोकायू पेजित्रिविया में भड़काऊ व्यवहार और सड़क अवरुद्ध करने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आमोगी में मुख्य सड़क पर कुछ मलबे में आग लगा दी गई। पुलिस ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। घटनास्थल पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच स्थानीय पुलिस अधिकारी विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। वे लोगों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और पुलिस के साथ सहयोग करने की भी अपील कर रहे हैं। इंडिविजुअल टैक्स पेयरों के लिए ये खास खबर, इनकम टैक्स रिटर्न करने की अवधि बढ़ा दी गई है। एमओआरआई द्वारा आज जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यदि 15 अक्टूबर की डेडलाइन के तहत कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न नहीं कर पाता तो उसे जुर्माना नहीं होगा, न ही कोई ब्याज लागू होगा, बशर्ते कि शुक्रवार 30 अक्टूबर तक रिटर्न किया जाए और यदि भुगतान करना हो तो उसे कर लिया जाए। जनता को ये भी सूचित किया जाता है कि कर्फ्यू आदेश के चलते आज एमओआरआई का दफ्तर पूर्व में सूचित रात 8 बजे के बजाय शाम 4:30 बजे बंद होगा। किसी तरह की सहायता के लिए एमओआरआई की वेबसाइट या उसके 2076000 नंबर पर उसके हेल्प डेस्क की सहायता ली जा सकती है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अनुसार सभी मंदिरों में आज पूजा का आयोजन सामान्य रूप से किया गया है। इस बीच भक्तों से रात 8 बजे पूजा संपन्न करने की मांग की गई है, क्योंकि 8:30 बजे से कर्फ्यू लागू होगा। और विदेश की खबरों में पश्चिम एशिया की सुलगती आग अब समंदर की गहराइयों तक पहुंच चुकी। बताया जा रहा है कि होमूज में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मिसाइल हमलों में 2 बड़े जहाज समंदर में डूब गए। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और वैश्विक व्यापार जगत में हड़कंप मच गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। डर्बी स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड में 70 साल के 70-year-old श्री दिलीप मुचुराम जो दिलीप से जाने जाते थे और पहले सेंटे के कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे इनके मकान डर्बी स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। बेल्जियम में 58 साल के 58-year-old श्री बोझनाथ रामला जो बाबू से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। इनका अंतिम संस्कार बाद में किया जाएगा, बाद में सूचित की जाएगी। बेलरो डे नुवेल फ्रांस बल्कि नुवेल डे कुवैत में बेलरो डे कुवैत में 62 साल की 62-year-old श्रीमती माया दुखी जो माया से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान बेलाओ रोड नुवेल डे कुवैत से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। स्कूल लेन कॉरेमास का पावे में 66 साल की 66-year-old कुमारी सीता देवी धन्नू जो गीता से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके भाई अशोक धन्नू के मकान स्कूल

0: इनका दिमाग पावे से उठाकर दाह संस्कार के लिए में जिनका दिमाग की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 8:00 PM और रॉयल रोड ब्रिजवेजे में 59 साल के 59-year-old जनाब मोहम्मद नौशाद जुमन जो नौशाद से जाने जाते थे इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके मकान रॉयल रोड ब्रिजवेजे से निकाल कर पहली ब्रिजवेजे की मस्जिद दे जाएगा, फिर दफनाने के लिए बोबुआ लालमाटी का कब्रिस्तान। फिनरल टुडे 2 PM। शोकग्रस्त हैं सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
2: You're listening to RM3 Radio. Man.

और चलिए यहां पर पुराने गानों का कारवां लेकर आए हैं आपके लिए सुहाना सफर वार्म वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन परी का साथ है सुपहर के 3 बजे तक

इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया।

और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थर्सडे आफ्टरनून आपके लिए लेकर आए हैं हम प्रोग्राम सुहाना सफर। उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन गानों को गुनगुना रहे हैं। गुड विशेस के साथ साथ आपकी मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इंतकाम फिल्म का गाना, माधुरी एंड परी और सभी लिसनर्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप माधुरी जी और हमारी प्यारी सी परी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और चलिए इंतकाम फिल्म का ये गाना आपके नाम इक्वली गोज आउट हमारे सभी दोस्तों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200 या फिर आपके फोन कॉल्स 4028070 4028070 हो रहा है आपका इंतजार।

बिल्कुल आप हमारे लिए और हम आपके लिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन मैं हूं परी आपके साथ इस वक्त गोविंद रघुनंदन हमारा साथ दे रहे हैं आप पाकवा से तो चलिए गोविंद जी अगला गाना आपके नाम और आपकी ओर से फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ अवेदा इक्वली गोज आउट फॉर रघुनंदन परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं मुकेश साहब की आवाज़ एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक धर्म करम फिल्म से लिया हुआ ये गाना स्पेशली गोज आउट फॉर यू मिस्टर गोविंद रघुनंदन साथ निभाने के लिए शुक्रिया RM3 रेडियो मनोरंजन हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं खूबसूरत से गाने आपके लिए सुहाना सफर प्रोग्राम अभी से लेकर दोपहर के 3 बजे तक

0: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कॉलिव्यू में गोली लगने से घायल इलुजी तुमा की सेहत में लगातार सुधार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने बताया कि आज सुबह इलुजी ने सहारे से चलना शुरू किया, अब वो पानी भी पी पा रही है। उनके दोनों हाथ और पैर भी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। गंभीर चोटों और मुश्किल ऑपरेशन के बाद इसे एक बड़ी प्रगति माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने इलुजी के इलाज में जुटी मॉरिशस और भारत की मेडिकल टीमों का धन्यवाद किया। कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन नहीं करने और अशांति फैलाने के मामलों में पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 16 साल के एक नाबालिग और एक महिला भी शामिल हैं। 4 लोगों पर दंगों में शामिल होने का शक है, जबकि एक व्यक्ति के खिलाफ हथियार रखने का पर कार्रवाई की गई है। 9 संदिग्धों को हिरासत में रखा गया है और आज अदालत में पेश किया जाना है। इस बीच गोकायू में सड़क रोकने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि अमोही में सड़क पर रखे सामान में आग लगा दी गई। पुलिस ने आग पर जल्द काबू पा लिया। देश में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। SMF और SSU के साथ हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। हाल के हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं का ड्रग्स के कारोबार से कोई संबंध है या नहीं, ये जांच के बाद ही साफ होगा। नाडेक के CEO कुणाल नायक के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों, पुलिस की गाड़ियों और पुलिस स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया है। उनका कहना है कि ड्रग्स का कारोबार रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई के साथ गरीबी, सामाजिक असमानता और युवाओं की मुश्किलों पर भी ध्यान देना जरूरी है। सुरक्षा के मौजूदा हालात को देखते हुए आज 15 और कल 16 अक्टूबर को देश के सभी स्कूल और प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री डॉ. महेंद्र गंगा प्रसाद के अनुसार स्कूल सर्टिफिकेट और हाई स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी। हाल की हिंसा की घटनाओं में नाबालिगों के शामिल होने पर

0: ओम्बुड्सपर्सन फॉर चिल्ड्रन अनीता घुरा ने चिंता जताई। मंगलवार से बुधवार की रात गिरफ्तार किए गए 94 लोगों में 16 नाबालिग भी थे। उन्होंने माता पिता से अपने बच्चों को घर पर रखने की अपील की। इस बीच सरकार ने चिल्ड्रंस एक्ट में बदलाव पर अपराध कर के लिए जिम्मेदार ठहराने जाने की न्यूनतम उम्र 14 से घटाकर 12 साल करने का प्रस्ताव रखा है। विदेश स्तर की खबरों में पाकिस्तान के पेशावर में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 29 लोगों की मौत, जिनमें एक महिला शिक्षक भी शामिल। हादसे में 19 लोग घायल, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। नुवेल दिकुवेत में बेलूल रोड नुवेल दिकुवेत में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती माया दुखी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उन्हीं के मकान नुवेल दिकुवेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोंस्टों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड ब्रिजेवेडिया में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के मोहम्मद नौशाद जुमन इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दोपहर बाद 2 बजे उनके मकान रॉयल रोड ब्रिजेवेडिया से निकाल कर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए ब्रिजेवेडिया का मस्जिद और दफनाने के लिए बुबुआलाल माथी का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। 58 साल के बेल्जियम में श्री भोजनाथ रमलाला की मृत्यु हो गई है। उनका अंतिम संस्कार बाद में किया जाएगा और समय के बारे में हम आपको बाद में सूचित करेंगे। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

वाला सफर और इस आवाज़ में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं 1:10 थर्सडे आफ्टरनून 15th ऑफ अक्टूबर नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स कुछ ऐसे गाने जो हमेशा से रहे हैं यादगार और सुहाना सफर अभी से लेकर सफर के 3 बजे तक आज थर्सडे आपका और हमारा साथ रहने वाला है 3 बजे तक और आपका प्यार आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250-6200 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028070-4028070 इसी नंबर पर आपका इंतजार

जी हाँ, सुहाना सफर प्रोग्राम अभी इस वक्त यहाँ पर जारी है और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कविता जी। गानों को पसंद कर रही हैं आप, धन्यवाद। कुछ आपकी पसंद, कुछ हमारी पसंद, शामिल होते हुए ये खूबसूरत नगमे आपके लिए ऑन आर एम थ्री रेडियो मनोरंजन। तो चलिए अभी के लिए ये जो अगला गीत है इसे आप सुनना चाहते हैं, परिचय फिल्म से लिया हुआ ये गाना, किशोरदा आशा भोसले की आवाज़ें। सभी सुनने वालों के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं परी का साथ सपहर के 3 बजे तक, ये खूबसूरत गीत आपके लिए चलते रहेंगे। आपका साथ यहाँ पर बना हुआ है, सो कीप एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल ट्रैक्स हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन पर।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं बोलो।

0: और चलिए यहां पर उमा जी हमारा साथ दे रही हैं आप 100 साल पहले ये गाना जो अभी हमने चलाया वो था आपकी पसंद का गाना योर चॉइस ऑफ सॉन्ग डेडिकेट कर रही हैं इसे आप सभी सुनने वालों के नाम एंड यहां पर ऐसे ही कुछ खूबसूरत गीत आपके लिए चलते रहेंगे ये है आपका RM3 रेडियो मनोरंजन तो यहाँ पर नंदा जी पाई से हमारा साथ दे रही हैं आप भी और बहू दिव्या है आपके बेटे हैं अविनाश अभिषेक अशिल आपकी बेटी अश्विना साथ में पति दीपक सभी पुनीता और गणेश परिवार को याद कर रही हैं आप डेडिकेट कर रही हैं ये खूबसूरत सा गीत सिलसिला फिल्म से लिया हुआ ये गाना लता मंगेशकर अमिताभ बच्चन की आवाजें और खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए एंड स्पेशली फॉर यू नंदा जी पाई से हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया एंजॉय दिस वन
1: और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं तुम होती तो कैसा होता तुम ये कहती तुम वो कहती तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती तुम होती तो ऐसा होता तुम होती तो वैसा होता मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. लता मंगेशकर रफ़ी साहब की आवाज़ और ये गाना शीला जी आप सुनना चाहती हैं फिल्म एक नज़र से लिया हुआ एंड विशिंग अमिताभ बच्चन अ वेरी हैप्पी बर्थडे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ये सदी के महानायक का और यहाँ पर हमारा साथ दे रही हैं आप पूरी मकुना परिवार के लिए डेडिकेट कर रही हैं गाना एंड थैंक यू सो मच याद करने के लिए हमें ऑन 4028074028070 जहाँ पर आप हमें फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं एंड हमारे डियर लिसनर्स जो इस वक्त साथ दे रहे हैं भूलिएगा नहीं आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस भी हम वेलकम कर रहे हैं 5250620 मैं हूं परी आपके साथ अभी से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन कुछ हमारी पसंद कुछ आपकी पसंद अभी के लिए यहां पर साथ दे रही हैं शीला जी और सभी मकुना परिवार ये गाना आपके नाम

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: और जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मॉरिशस से नहीं, हमारे कुछ दोस्त हैं जो सात समंदर पार से भी हमारा साथ निभाते हैं। मनीता जी, आप हैं फ्रांस से, हमारा साथ दे रही हैं आप, तो ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं स्पेशली फॉर यू। आपकी मामा है सुमंती, आपकी बहनें आरती, सचिता, बबिता, रेखा, भाई सत्यम, भाभी उषा और आपकी एक कज़न है जो हमेशा सुहाना सफ़र प्रोग्राम इंजॉय करती हैं, आप है राजेश्वरी जगू। सो ये गाना आपके नाम, आपके तमाम अपनों के लिए और मनीता जी स्पेशली फॉर यू, ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस, हमेशा साथ निभाती है, हमेशा अपनों के बारे में सोचती हैं और उनके लिए स्पेशल गाने डेडिकेट करती हैं। सो ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं फॉर यू और हमारी प्यारी सी कनिष्का हमारा साथ दे रही हैं आप भी। सो आई डू होप दैट ये गाना आपके दिल को लुभाएगा, इसे डेडिकेट कर रहे हैं फॉर यू एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन। मैं हूं परी आपके साथ अभी से लेकर सुपहर के 3 बजे तक का खूबसूरत गीतों का कारवां राइट हियर ऑन सुहाना सफर।

बिल्कुल जी, आपका दामन तो हम नहीं छोड़ेंगे और ऐसे ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते रहेंगे। इट्स 155। अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाली हैं समाचारों की ओर। तो यहाँ पर ये जो गाना है सीलू एक्वायर से डेडिकेट कर रही हैं फॉर ऑल पंचाया परिवार एंड सभी फ्रेंड्स के नाम। कविता जी देवरे से आप भी हमारा साथ दे रही हैं, मोहन, रेखा, अंबिका, प्रेमिला आप सब हमारा साथ दे रहे हैं और रेडियो मनोरंजन। इसी गीत के साथ बढ़ रहे हैं समाचारों की ओर। साथ देते रहिए, बिंदु दुखित राम जी आपका गाना चलाएंगे थोड़ी ही देर में। साथ देने के लिए शुक्रिया। परी आपके साथ है सुपहर के 3 बजे तक। यह है सुहाना सफर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

0: दो बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। दो बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक कल रात देश में हालात काबू में रहे और किसी बड़ी घटना की खबर नहीं मिली। कर्फ्यू कल शुक्रवार 16 अक्टूबर तक रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं। इस बीच कस्कावेल, कोकायू, सुल्फेरिनो, मोतेबिलो और शमेग्रोनी में गन्ने के खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आई, जिन पर जल्द काबू पा लिया गया। कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 9 को हिरासत में रखा गया है और आज अदालत में पेश किया जाएगा। बाकी लोगों को पूछताछ के लिए छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री दफ्तर ने लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन जारी रखने की अपील की है। कॉलिव्यू में गोली लगने से घायल इलोजी टोमा की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने बताया कि आज सुबह इलोजी ने सहारे से चलना शुरू किया और अब वो मुंह से पानी पी पा रही है। उनके दोनों हाथ और पैर की अच्छी तरह भी काम कर रहे हैं। गंभीर चोटों और मुश्किल ऑपरेशन के बाद इसे एक बड़ी प्रगति माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने इलोजी के इलाज में जुटी मॉरिशस और भारत की मेडिकल टीमों का धन्यवाद किया है। देश में हाल की हिंसा और शांति की घटनाओं में 16 नाबालिगों के शामिल होने पर ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन ने गहरी चिंता जताई। आज जारी एक बयान में माता पिता से अपने बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की अपील की गई है। उन्हें ये जानना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ हैं, किन लोगों के हाथ के साथ रहते हैं और सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं। बच्चों को हिंसा से दूर रखने के लिए उनसे बातचीत करना भी जरूरी है। ओम्बुड्स पर्सन का कार्यालय इन 16 नाबालिगों के मामले पर नजर रखेगा ताकि कानूनी कार्रवाई में बच्चों के हितों का ध्यान रखा जाए। हाल में की हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं का नशीले पदार्थों यानी ड्रग्स के कारोबार से कोई संबंध है या नहीं, ये जांच के बाद ही साफ होगा। नैडेक के सीईओ कुणाल नायक के मुताबिक सेफ सिटी के कैमरों, पुलिस की गाड़ियों और थानों को भी निशाना बनाया गया है। उनका कहना है कि नशीले पदार्थों का कारोबार रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई के साथ गरीबी, सामाजिक असमानता और युवाओं की मुश्किलों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। टैक्स पेयर आज आधी रात तक अपना रिटर्न जमा कर सकती हैं। एमओआरए के मुताबिक 13 अक्टूबर की सुबह तक 2,41,202 रिटर्न जमा हो चुके थे।

लेकिन हजारों लोगों ने अब तक ये काम पूरा नहीं किया है। रिटर्न mra.mu पर ऑनलाइन भरा जा सकता है और मदद के लिए MRA के हॉटलाइन पर फोन किया जा सकता है। विदेश स्तर की खबरें। पाकिस्तान के पेशावर में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला शिक्षक भी शामिल। हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच बताई गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। माता बदल स्ट्रीट विल्नोमीबर्ग में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्री धीरज माता बदल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अशोक के नाम से ज्यादा जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे बल्कि कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को दोपहर बाद 2 बजे उनकी पत्नी प्रमिला माता बदल के मकान विल्नोमीबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पृथ्वीबेलिया मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है। Your news on NBC Plus.

बिल्कुल, ये जो प्यारा सा गाना था यकीन फिल्म से लिया हुआ ना, ये गाना था बिंदु दुखित राम आपके नाम कारोकासिया से हमारा साथ दे रही हैं आप सभी का हम स्वागत करते हैं। 2:08 थर्सडे आफ्टरनून 15th ऑफ अक्टूबर और यहाँ पर जारी रह रहा है सुहाना सफर प्रोग्राम सपहर के 3 तक। बिंदु दुखित राम जी साथ दे रही हैं आप, पति है रमेश और सभी दुखित राम परिवार, आपके बेटे बेटी बहू दामाद सभी को आप याद कर रही हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो आज घर पर हैं और वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो सभी दुखित राम परिवार के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी गुड विशेज एंड दैट वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग डेडिकेटेड आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ पर अब्दुल अंसारा बानू हमारा साथ दे रहे हैं आप, सो वार्म वेलकम आपका ऑन रेडियो मनोरंजन। ज्योति जी आई हैं शातो बनारस से, कहती हैं गाना हो जाए फौशनी रेखा सुरेखा सभी मदब परिवार के नाम। तो चलिए यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गीत, ये सुदास साहब की आवाज, चितचोर फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए। परी का साथ है सपहर के 3 तक, आपके पसंदीदा गाने, कुछ आपकी पसंद कुछ हमारी पसंद, आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250-6200 इस पर आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस या फिर आपके फ़ोन कॉल्स 4028070-4028070 इसी नंबर पर आपका इंतज़ार।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जी हाँ दोस्तों, गीतों का कारवां जारी है। 2:45, विजय जी आप खुश तो हम भी खुश। बस गीत सुहाने जो हम आपके लिए चला रहे हैं, सुहाना सफर प्रोग्राम अभी जारी है RN3 रेडियो मनोरंजन, जहां पर कोशिश यही रहती है कि इन गीतों के साथ आपकी दिल को बहलाती रहे। इस वक्त प्रिया जी आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लॉन्ग माउंटेन से हमारा साथ दे रही हैं आप। चलिए किशोरदा की आवाज़ में ये गाना अमानुष फिल्म से लिया हुआ ये ट्रैक, एंजॉय दिस वन।

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं हैं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।

बिल्कुल दोस्तों आपके बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं लेकिन बिल्कुल आपके बिना जिंदगी जिंदगी भी तो नहीं थैंक यू फॉर द लव थैंक यू फॉर द साथ और इसी गीत के साथ समय हो चला है कि परी आपसे लिए अलविदा आरएन3 रेडियो मनोरंजन सुहाना सफर प्रोग्राम आपने सुना थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे प्रोग्राम आज की चर्चा तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड मुलाकात होगी आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम 12 से लेकर 2 बजे तक सुहाना सफर प्रोग्राम लेकर आएंगे आपके लिए तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक अभी के लिए ये सुदास साहब की आवाज ये खूबसूरत सा नगमा हमारे सभी सुनने वालों के नाम हैव अ ग्रेट टाइम रेडियो मनोरंजन के साथ

0: तकदीरों को।
1: शॉट 3 PM आइए सुनते हैं समाचार आदित्य के साथ। नमस्कार।
2: नमस्कार गिनीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार। प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक कल रात देश में हालात काबू में रहे और किसी बड़ी घटना की खबर नहीं मिली। कर्फ्यू कल शुक्रवार 16 अक्टूबर तक रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं। इस बीच कास्कावेल, गोका, यूसुलफेरिनो, मोंटेबेलो और शमेगोनी में गन्ने के खेतों में आग लगाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर जल्द काबू पा लिया गया। कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 9 को हिरासत में रखा गया है और आज अदालत में उन्हें पेश किया जा रहा है। बाकी लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री दफ्तर ने लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन जारी रखने की अपील की है। कोलोवियो में गोली लगने से घायल हुई एलोजीटोमा की हालत में लगातार सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेशु ने बताया कि आज सुबह एलोजी ने सहारे से चलना शुरू किया और अब वो मुंह से पानी भी पी पा रही है। उसके दोनों हाथ

0: और पैर भी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। गंभीर चोटों और मुश्किल ऑपरेशन के बाद इसे एक बड़ी प्रगति माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने एलोजी के इलाज में जुटी मॉरिशस और भारत की मेडिकल टीमों का आभार प्रकट किया। देश में हाल की हिंसा और अशांति की घटनाओं में 16 नाबालिगों के शामिल होने पर ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन ने गहरी चिंता जताई है। आज जारी बयान में माता पिता से अपने बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की अपील की गई है। उन्हें ये जानना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं। बच्चों को हिंसा से दूर रखने के लिए उनसे बातचीत करना भी जरूरी है। ओम्बुड्समैन का कार्यालय इन 16 नाबालिगों के मामले पर नजर रखेगा ताकि कानूनी कार्रवाई में बच्चों के हितों का ध्यान रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 29 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक महिला शिक्षक भी शामिल है। हादसे में 29 लोग घायल बताए गए हैं, जिनमें 5 लोगों की हालत गंभीर है। बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच की बताई जाती है। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: आज की चर्चा।
5: आप सभी को नमस्कार। और आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। वैसे आज टेक्निक पर यूसुफ है और प्रोडक्शन सहायिका है उरुसा और हमारे प्रोड्यूसर है जिनेश। तो हम सब बिल्कुल तैयार हैं इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। आजकल जैसे आप सब कोई जानते हैं, जब सब सभी लोग जानते हैं, आजकल हमारे देश मॉरिशस एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना कर रहा है। ऐसे समय में आम जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना बेहद बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम सोशल मीडिया, कर्फ्यू ऑर्डर और इसके दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करेंगे। कर्फ्यू या किसी विशेष प्रतिबंध के दौरान प्रशासन के निर्देशों को समझना और उनका पालन करना हर नागरिक का जिम्मेदारी है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए, सही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ पुलिस विभाग क्राइम प्रिवेंशन यूनिट से आए हुए सर्जन उगाटू उपस्थित हैं। नमस्कार। और आपका हमारे इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत हम करते हैं। सर्जन, जैसे कि हम सब कोई जाने लगा, हमने के देश अभी एगो तनाव भरल स्थिति में जियता, तो पुलिस विभाग के में कौन कौन कदम लेवल जात बा, और मतलब ई स्थिति को नॉर्मल आने के कौन कौन इस मतलब कौन कदम पुलिस देने से कौन कौन कदम हुआ था?
6: जैसे बोला ले 13 से कर्फ्यू ऑर्डर इशू हो गल बा, ला फोर्स पुलिसिया जैसे बोली लाजा फुली मोबिलाइज हो गल बा।
5: अच्छा।
6: जब बोला था ला फोर्स पुलिसिया सब जन इनिटी बा, SMF, SSU, ADSU, CID, हमी के पुलिस रेगुलियर सब जोन दे ड्यूटी जोन ऑफिस सब जोन काम करेला, सब कोई मोबिलाइज हो गल बा और सब कोई कंसंट्रे होता जमे है प्रॉब्लम वा जल्दी से जल्दी रिजोल्व हो जाए, बस कि जाने लेना लापे हैं पोता हाँ
5: शांति
6: और है लिपोकवा में तो कारम बा लिग्जामे बा है लिपोक में ऐसा प्रॉब्लम हो बा ला पुलिस जैसे बोली ला जाए फोटो में आज करता जैसे बोली ला जाए जीरो टोलरेंस ला पुलिस जे है कानून के

0: again jaiba la police hésiter nahi hoy action lei aur habi observe karba ta bahut la police ba surtout rat ke aur kun specific kaam la police karata bahut special patrol ba special patrol par bole ko jatai jaise ba commercial areas lagi places of worship financial institution filling station वहाँ बहुत ला पुलिस कंसंट्रे रही सिक्योरिटी दे और जैसे बोली जा हाउ कर्फ्यू दे जब से शुरू होला जब से फिनी होला हाउ ला पुलिस फुली मोबिलाइज रही और बहुत रोड ब्लॉक रही सीमा पर व्हीकल चेक पॉइंट ला पुलिस जैसे फिल्ट्राज करेला जे कुमाजिया कोनो जाना मूवेल इंटेंशन लेके व्हीकल होता था ला पुलिस उलोके आरिते करी
1: अंततः ला पुलिस जन अपन काम पूरी तरह से सतर्क हवन जा उलोक सब मोबिलाइज हम सा अभी तो अभी बोला कर्फ्यू ऑर्डर ई कौन ची है कर्फ्यू मतलब कब लागू होला ई
0: कर्फ्यू ऑर्डर सकेला सब कोई पूछे तो कौन ची है कर्फ्यू ऑर्डर कर्फ्यू ऑर्डर फासिल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर अपते एगो ला लॉ है अब हाउ कब लागू होला है स्पेशल में है रोज नहीं लागू होला जब को मजे पेई में गो प्रॉब्लम होता जैसे अभी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होता ला पॉपुलेशन के प्रोटेजे करे के कमिश्नर पुलिस के पुवार पुलिस एक्ट एगो ला लॉ है पुलिस एक्ट कमिश्नर पुलिस के एगो पुवार ओ को मजे कर्फ्यू ऑर्डर इशू करेला हम के
1: बिना मजे permission
0: c'est quel commissaire de police n'ai
1: le
0: ministère de l'intérieur bas attorney général sab koi sangi bait ke hai odawa issue karela hami ke main l'objectif ha ko majhe sab chi niman se calme hoy sab chi ja hai sab problem jun ha jal se jal ko majhe hami ke main issue ha population ke प्रोटेजी करेगी अब है
1: क्या है हवे पुलिस मतलब पॉपुलेशन खातिर वही से आवश्यक है उन लोग के सुरक्षा खातिर
0: हम के जैसे बोली जब पॉपुलेशन के सब 100% पॉपुलेशन से कौन से ना तो मालूरेजमेंट एक छोटा ग्रुप कटिन पर ता ऐसा नहीं गुला लोग आने के इनडायरेक्टली सब कोई पे इंपैक्ट होता
1: तो जब कर्फ्यू ऑर्डर बोला तो कितना दिन तक सकेला कायम रहे
0: हबी देख बत दो फाज में आलबा प्रीमियर दिन हबी जो इशू हो रहल ले 13 के हाउ कली रहल 21:30 से ले लॉर्ड में 6 du matin तब सिचुएशन एनालाइज होल कमिश्नर पुलिस सब कोई देखलन जा अमिलियोर होल सिचुएशन सो नहीं तो देख लीजिए थोड़ा बहुत रहल प्रॉब्लम तो हवे से कर्फ्यू ऑर्डर एक्सटेंड होल और दो दिन के और हाउ में थोड़ा सुन सांसमा होल बा जैसे कि शुरू होला 21:30 रात के लिलोडे में 6 रहा तो अब 5 हो गल बा है थोड़ा अमाउंटमा होल बा और आज रात के कर्फ्यू ऑर्डर रही 21:30 और
1: आज तो बिफे और सूप
0: भजीर ले और नहीं बोला था कि कर्फ्यू ऑर्डर यहीं फिनी हो जाए Toujours, la police décrit la situation qui est basse, safety and security qui est basse. J'ai pari extend karike, how discretion commissaire par zaki la ham habile kali kal takba.
1: Tab din ba din,
0: day to day analyse karila ja, qui est situation ba, j'ai progrès comme j'ai nai lokata, j'ai calme, public calme nai hota, t'as pari extend karike.
1: Par agar man la. मान लो एगो कर्फ्यू ऑर्डर के मतलब उल्लंघन करेला कोई जन जन कर लग तो एक परिणाम कौन ची है
0: हाँ हाई बोले के भुला गई जब बोले ला जा कर्फ्यू ऑर्डर में तुहरा चला तुहर घर में रही के काहे तुहर घर में रिस्ट्रिक्शन तुहर सेफ्टी तुहर सिक्योरिटी खातिन तुहरा चला हाउ ले जन बोली से नहीं लिख ले के तुहर घर में रह के
1: चाहे करेगी
0: जानी ला कर्फ्यू ऑर्डर एगो छुआ नहीं है एगो ऑब्लिगेशन ला लॉ जैसे बोली कानून ऐसे बोलेला और जब कर्फ्यू ऑर्डर है हाउ लास्ट में कैटेगरी नहीं कर ली बाए सिपा केवल अजुल लोग के है का ही बुतवा बोला था इताली एक्सप्लेन कर अब

0: जब दिखब जा कि उफांस कर लीबा हई जब कर्फ्यू रे सब कोई कि पॉपुलेशन ऑन जनरल लुक कि कर्फ्यू रे सब कोई कि तोरा ओब्लिजे हा ओकेला ओके चला अबाइड करी कि और जे अबाइड नहीं करब तो हाउ मैं सैंक्शन बा ऑफेंस है और
1: तब तो कौन कौन स्थिति में ऑफेंस में पर बोले के आगे तो कौन कौन स्थिति में ई कर्फ्यू के दौरान कोई अपन घर से बाहर निकल सके
0: हाँ हाई मैं जैसे बोली ला जा एक्सेप्शन बा एगो इमरजेंसी रही जैसे बोला अब कोई मालाद बा तो ओके ओके श्वान बा ओके पर लोपिताल जाए के तो हाउ आदमी के द्वार रही लिखले के जाए के लोपिताल और औसन काम है कुमजा ला पुलिस तुहरा आगे दे कर दिला तो ला पुलिस वा एनालिजे करी केस टू केस बेसिस देखी जेन्युइन केस है तुहरा जाए दे इमरजेंसी बोली मालाद हवा फार्मासी
1: फार्मासी
0: जाए दवाई जाने ला लवा देख बा एक्सेप्शन वा बहुत बा बहुत बा है जो बोले सा इसेंशियल सर्विसेस लोके है ला लवा को मजा पेमेंट करे ला लिख ले कि ला पुलिस के डिसिप्लिन फोर्स के पोम्पिये के सब लोग जो इसेंशियल सर्विसेस में काम करे ला हमी के जो आवोका बा जे को मजा
1: जूज आवोका
0: ओ लोग आवोका के 24/7 ओ लोग को मजा अवेलेबल रहे लंजा जे को मजा बा असिस्टे करे के क्लियंट के तो ओ लोग के है ला लवा को मजा रिस्ट्रिक्शन नहीं बा ओ लोग के और केवल ये लोग के ना डॉक्टर वो के प्राइवेट प्रैक्टिशनर जाता है गो मालाद के दिखे वो लोग वो सकी से अकेले हो फार्मासिस्ट और सभी जो हम के जो कम करवा जो सकब सब बोले जो फीलिंग में काम करेला कोई फीलिंग तो बहुत बुनिया काम करे के शुरू करेला था वो लोग के पूवी सकब जब ला पुलिस थोड़ा आगे थी कर तू हर वोल बुनिया रही था एयरपोर्ट चाहे ला त्वाजे तो आगे चल जाए कि ना तो तू जाए सोचा वायाजे हो था वो तो खाली तू हर बीए
1: बताए
0: के चाहे ला तो ओके प्रूफ को मजे पुनाओ ये के जाने ला मोरिशे हमें के सोचते थोड़ा डिफरेंट हाँ हमें खुशी ला इलाक को मजे जब एक इवेंट बा सेंसेशन थोड़ा जब से देखी तो है ली पुकवा है सब द्वावे नहीं है लिख लेके जैसे बोली फिर से बोली ला फाइन वा फाइन बहुत सेवे बा फाइन जे कुमाजे ब्रीच ऑफ कर्फ्यू कर ला जे हाउ ले वा ऑन डेओ लिकल ला पुलिस तो हर आरेटे कर ला और तू नहीं सकला एगो रीजन जस्टिफिए दे उकर फाइन हर मैक्सिमम 50,000 रुपी और जैसे बोली सा इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 5 years है बहुत ग्राव है हाई बोला पॉपुलेशन के हाई गो कॉन्ट्रावेंशन है एक के बोली ला जा क्रिमिनल ऑफेंस ओके सब कोई के चाहे ला लोग के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ले के ला पुलिस जैसे बोली जीरो टॉलरेंस पर काम करे था कुमार जैसे बोले सा नु पागे फिगर जे कुमार जी फोटे करबा तब परी ला पुलिस के एक्शन ले के
1: अच्छा तो हमने के सब बताओ कौन

0: तब 15 लालिस 15 नो रहल हबी बुलब तुहर एन पौ एन कुन लालिस रहल पोलुई बुबा सें रोजिल कैथ्रोबोन पालमा वाक्वा फिनिक्स क्यूअपिप फोरेस्ट साइड माइबू व्यू ग्रांपो शुमे ग्रिये बेलोम्ब काज नोयाल ब्लैक रिवर बांबू पेटिट रिवियर लागुलेट फ्लैक ऑर्जी गुडलैंड ग्रांड गुब और ट्रियोली जब कर्फ्यूआ एक्सटेंड होल तो और दुगुल एंड्रॉय अजूटे होल है में 15 से 17 होगल सेंट पियर और क्वार्टर मिलिटेयर है सब एंड्रॉय डायरेक्टली कुमा दिया कर्फ्यू और वह है सब एंड्रॉय पर बा
1: तो मतलब एगो कर्फ्यू ऑर्डर के दौरान जनता लोग के कैसे परिस्थिति के झेले के पड़े ला
0: देखा जून लैंड्रॉय है लालिस सिटी होल बा उलो की ता श्वावी नहीं बा और जून लैंड्रॉय में नई सिटी होल बा हो नई विजय को मजे तो हरा द्वार निकले के पर जब एगो कर्फ्यू ऑर्डर बा मोरिस में विजय रिस्क बा जे लिखल बा रिस्क रही तुहरा चहिला तुहर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमने ला पुलिस बोला था जा एविते करे के हाई सब लिपो को लिखले के पास की प्रॉब्लम वा नहीं सक बा जाने कहाँ पर बा आपरे जब हाई सब कर्फ्यू ऑर्डर ऑनलीवे हो जाए तब सब चीज नॉर्मल रही बहुत इंफॉर्मेशन मिली तब तब सब कोई नॉर्मल सकी सुख के लिए हुई हाई कर्फ्यू ऑर्डर जैसे कहते हुआ फिर से बोला था सकीला और एक्सटेंड हुई चाहेला कम्युनिके आतान करी
1: परिस्थिति पर निर्भर होला तो ये सब तोड़ फोर जुन होता जुन होल यकीनन ये एगो क्राइम है ऑफेंस है तो सर्जन हमने के सब बतावे कि कितना प्रकार के ऑफेंस बात है
0: हाय मैं ढेर प्रकार के ऑफेंस बा प्रीमियर ऑफेंस जो नावेला जे तुहर घर से निकल ला ते हाउ हा ब्रीच ऑफ कर्फ्यू द को मजे है कर्फ्यू द वा के रिस्पेक्ट ही नहीं कर ला है बोल दे लियो कर फाइन कितना बा और जो ऑफेंस बोले के आगे हम बोला प्रीमियर जुए प्रीमियर दिन जब कर्फ्यू द रहल 93 पर्सन अरेस्टे हो रहल Hey, 93 personnes ont beaucoup différentes offenses que les gens.
1: Quelles sont
0: les offenses? Première, c'est le breach of curfew order. Or, et deuxième, une offense, c'est le taking part in riot. Qu'est-ce que c'est pour là? Problème ou tard en groupe, mais problème ou tard manifestation ou tard violence, tout homme participer ou tard. C'est le langage créole, mais vous voyez là-dedans. Aguaba, tout homme l'essence de la toile enflammée, car tu vois. Taking part in riot, damaging property. है बहुत ग्राव बा केवल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक रोड जाने ला है दुगुजाफे वा कितना दिगा कर ली बा हाउ मेट्रो एक सेमेन से नहीं रोले होता है इनडायरेक्टली सब कोई पे इंपैक्टे होता है लिपोक एग्जामे में परल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन करे के मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट के कैसे हम के लड़का जाए एग्जामे कंपोज करे पास की मेट्रो फासिल रहल हाउ मैं को मजे लेता सकब गने 30 मिनट में हम डेस्टिनेशन में चल जाब जब हाउ पैरालिजे हो गए पर दूसर डिप्लोमेट करे के हई जो मैनिफेस्टों बा जो मालफेटियर बा वो लोग सेंसेशन में इमोशन में हई सब डिजोट करते हैं जा मिसलमा हई सब उफ और जो ऑफेंस बा पोसेशन ऑफ एक्सप्लोजिव कुछ बा जब वीडियो देखा देख बा हाउ जैसे बोलिया सा कोकटेल मोलोटोव हाउ को मजे वो लोग फैब्रिक करते हैं जा लिसेंस माजूत लेके बूटे में डाल के हाउ में आग डालते हैं जा स्टेशन में आग डाल बा व्हीकल जलावते हैं जा आसुन आग काल कान में आग डाल रहल पियाज वुल सुपर मार्शे डिफेंस करते हैं जा है सब जो ऑफेंस तुहरा बोलत है बहुत ग्राव बा जैसे क्रिमिनल ऑफेंसेस अरेस्टेबल हाई जून
1: 93
0: हाई मैं तुहरा बोलब तो शुक्र हुई बथुरा हाई 93 में majorité c'est young adult.

0: विजय 25-30 इयर्स के जवान हो जा और सब जो जस्ती शोक बहाई में कैंस मिने अब हमी के लयिका लोग मैनिफेस्टेशन में पार्टिसिपे हो बहुत ग्राव बा हई एगो बहुत क्वेश्चन सब कोई के चाहे ला पूजे करे कि काहे हमी के लयिका लोग हई चिप दे इलीगल एक्शन में पार्टिसिपे कर प्रॉब्लम वा कहाँ बा तो हई
1: ये कैसे देख ले जा ई समस्या कहाँ से होलबा कहाँ से उत्पन्न होलबा
0: देखब त बहुत मिनेया पर बोलब है मिनेया पर्वत आप से जानी ला हाउ मिनेवा शुरू करब त लालवा हमी के मिनेया के थोड़ा पारे नहीं है लालवा एडल्ट और मिनेया तो कोनो कोनो आदमी है कोनो ग्रुप है उन लोग के सेवी करता हूँ अंजा को मजा जानी लंजा जब हाई मिनेया कोनो ऑफेंस करी तो नहीं सकब पोसुव करी नॉर्मल जैसे को एडल्ट के पोसुव करते ही जा तो अभी चाहे लगे क्वेश्चन पूछे करे के तो हाउ मिनेया वा रिस्पॉन्सिबिलिटी को पारेंट पर है ना जे पारेंट नहीं बा एगो फैमिली हुई एगो गार्डियन तो कैसे पॉसिबल बा एगो मिनेया रात के फोटो डॉन ला नुई बोला था 10-11 आ सोर एगो मिनेया सीमा पर बा मैनिफेस्टे करता आग डालता तो पारेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ बा यहाँ पर एगो लॉजिक नहीं लौकता इसकी कंट्रोल नहीं बाई मिनेया पर प्रॉब्लम वा कहाँ बा जानी ला पारेंट के चाहे ला समझे कि अभी एगो निवेदन करता है सब पारेंट लोग संगे तो लोग के चाहे ला तुहर लड़का लोग संगे बतियाए कि जैसे हम ही क्राइम प्रिवेंशन में जाएला सा प्रिवेंशन कैंपेन करे लिकुल में सेंसिटाइजेशन
1: अच्छा क्राइम प्रिवेंशन यूनिट तो लोग जालन जा जागरूकता का देर को अभियान करेला कहाँ कहाँ पर ही
0: क्राइम प्रिवेंशन यूनिट के वन ऑफ द को ड्यूटी है अवेयरनेस हम ही के मेन ड्यूटी है सब लिकुल जो है प्राइमरी सेकेंडरी अब तक प्री प्राइमरी वो जाते हैं जा बहुत छोटा से जाए ला जा एक्सप्लिके करे ला जा है जन लोग के नूवे जेनेरेशन जैसे बोलिया सा जेन जी एगो बजुली नाम देवल बालो के सिर्फ प्रॉब्लम बहुत बहुत प्रॉब्लम लोग से मिला था जाए ला सा सकब जा बोले हो कैलेंड्रियर स्कूलेर में जेफो का इला सा प्रीमियर टीम डीजेम टीम सब जोन लिकोल प्रीमियर सेकेंडरी 100% जाके बतिया इला जा क्राइम प्रिवेंशन यूनिट हर कोना में बा आगे खाली एगो हेडक्वार्टर है ब्राजील अब तो सब यूनिट बा नॉर्थन साउथन ईस्टर्न वेस्टर्न मेट्रो सगरो बा
1: तब तू लोग अपन काम है जन प्रीमियर है जागरूकता खाते सबको लेकर लोग छोटा से बताओ बताओ कुछ कुछ
0: हाँ जाइला सा एक्सप्लिके का क्या सा लालवा कुछ बा लालवा कुछ बा मोरिस में चहिला लालवा के आलुंगन करके एगो श्वान है हा लालवा
1: इता लाइका लोग खाते तो पारेंट लोग के चाहे ला बेटा
0: तो है ये बोला था हम एक ला पुलिस केवल ला पुलिस नहीं मिनिस्टर सब जोन ऑर्गेनाइजेशन ओएनजी सब कोई लामे देवता हमी के जन के एडे करे के पस की उलोगवे हमी के फ्यूचर है ना जैसे बोला सा हमी के जन आगे उलोगवे पेवा कंट्रोले करे के तो हमी लोटोरिटे मिनिस्टर सब कोई हमी के जेफो करे था इसा जाए ला सा एक्सप्लिके बहुत डिटाइल से एक्सप्लिके
1: जैसे आपी बोला मिनिया में कई जन कई मिनिया तो कैंस तो लोग के भविष्य ऊपर फ्यूचर के
0: वो लोग जाने ला है
1: गोलापुलिस केस मिला ला भी जैसे
0: वो लोग जाने ला अभी जन हवन सा वो लोग कौन से कौन सा नई सोचते हवन सा कैसे वो लोग पर इंपैक्ट है वो नेगेटिवमेंट जाने ला जैसे एगो केस को मजे तुहर में एगो केस हो गल लाकू पर अल जाए के कौन दाने हो गई ला हाउ तुहर दुश्य में जैसे बोला सा लैंग्वेज क्रियोल तुहर मोरालिटी में चल जाए ना और मोरिस में तो हवे को मजे सबसे बड़ा सर्टिफिका है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर जैब काम खोजे सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर वायाजे करब वीजा मोरालिते जैब पीएमई के एप्लीकेशन करे मोरालिते तो हई को मजे हमी के जेनेस में हई सब छोटा एरिया नहीं है बोला था हमी के मासूमियत से
1: हाँ मासूमियत से ले
0: मासूमियत में जो सब एरिया का लिसा हो बहु बहुत

0: इम्पैक्ट करी उलुके फ्यूचर में खे जाए लासा एक्सप्लिके करी लासा जाने लव बहुत लेता बहुत प्रिपरेशन लेके हम खे कमवा करी लाजा प्रेजेंटेशन करी लाजा पावर पॉइंट सब जोन फोटो जोन प्रॉब्लम ला बतलाए लाजा जमे को मजे लाइकवा जानी खे सब को मजे प्रॉब्लम है खे में नहीं चाहिए ला ढुके के और कल हमी के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एगो मिसास पासे करलक हबी जैसे लालवा बा एगो लड़का के कुमाजिया फुदे कातुजा मोते रही तब सकब पुस्वीव करी तो हबी जैसे सिचुएशन वहाँ हुल देख लीजा बहुत मिने एम्प्लीके बा तो गवर्नमेंट सोचता है लालवा जोन चिल्ड्रन एक्ट है हाउ अमांडे करी हाउ लालवा लालवा लाज कातुजा वहाँ के उसकी बेसे हो जाए 12 ans है चला थोड़ा अटान करी के जब इम्प्लीमेंटे हुई तो अनाउंसे हुई और एक अफेयर बोलती हमी के जन के दिख बा हो वीडियो जन लोग मास्के होता मास्क कागुले होता जैसे बोली कॉकटेल मोलोटोव तो एक पारेंट एक फैमिली जब देखा था वो घर में ओकर लड़का है सब चीजवन मैन्युपुले करता तो चाहे लगे के शो पोसे करे कि ना है एक खेल नहीं है लेसेंस से एगो लड़का खेलता बुटेई में डालता एगो बाजीनाज नहीं है हवे शुरू से बोला था रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने लिकोल उकर पर ट्रावाई करता ला पुलिस उकर पर ट्रावाई करता
1: अब सकेला जैसे पारेंट अभिभावक वो लोग नहीं देखा था वन सा की कौन ची होता सिलमा जैसे आप बोला था चाहे जाने की तो लड़का कहाँ कौन ची करता है बखतवा कहाँ करने बा
0: जैसे l'éducation commence à la maison, non? L'école mais académique mili, la force policière t'aura guidé kari, l'autorité t'aura guidé kari, des parents toute la responsabilité n'est libre, de beaucoup de problèmes ou la ou l'école d'un t'aura comment dire délinquant ou galba le qui dresse kari. How is it have niveden kari tes parents look sangi, t'aura l'école le qui chahi la bataille qui explique kari que hai sa problème mais n'est duke ki.
1: Ta jab la minya log ke giraftar kar le baat u log ke kaise aap log u log se chahi bataille ke u log se jab pakad le le ba
0: जब एगो मिनेर हुआ जाने ला एगो मिनेर जैसे लड़का बोली ला जा नहीं सकब सा पारे लालवा इसे बोली ला पारे एगो अजुल मतीन एक्शन ले एक्शन टेकन वा डिफरेंट हो जैसे बोलब चाहे ला प्रेजेंस पारें एगो अजुल तब एगो ऑफेंस कर ला तुहरा लेके जब सा स्टेशन क्वेश्चने कर सा जब एगो लड़का रहे ला चाहे ला एगो पारेंट एगो फैमिली एगो गार्डियन एगो रेस्पॉन्सिबल पार्टी अब एगो मिनेर के हबी जैसे लालवा बा नहीं सकिला सा डिटेन करे डिटेन को मजा ओके बन करे मिसलमा ओके आप सब क्वेश्चन कर अब सर उस स्टेटमेंट दे प्रेजेंस ओकर पारेंट तब से मां प्रोसीजर वा पारे है लड़का के चाहे ला पारेंट लोग के जाने के लड़का के गो लाकू से पारे है चिल्ड्रन कोर्ट जे ऐसा लाकू बा विजय ऑफेंस हो बा लड़का लोग के खाली प्रोसीजर वा डिफरेंट है नहीं चाहे ला सोचे कि अकोस हम एक मिनियर है ऐसा लड़का है ऐसा तो हम के लालवा नहीं बा जैसे बोला सा तू ते पे है मिनी लड़का हवा मिनियर हवा सिर्मा लालवा बा सिर्मा पारेंट के चाहे ला इसको जैसे बोला सा अकोम्पाइन करे कि हाउ लड़कवन के मैं सिर्मा लालवा बा या मैं मेरे को मिनियर हवा
1: तो आज की चर्चा इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस थोड़ी देर में हम इसको जारी रखेंगे और सोशल मीडिया पर बात करेंगे फिलहाल यूसुफ आपके लिए गीत चला रहे हैं।

0: इस प्रोग्राम को हम जारी रख रहे हैं और आपके पास कोई सवाल हो 402-808-5 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और आज इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में, इस महत्वपूर्ण चर्चे पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कर्फ्यू के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, अब थोड़ा घड़ी में सोशल मीडिया पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ हैं क्राइम प्रिवेंशन यूनिट से आए हुए शेजान उगाटू हमारे साथ हैं। तो इन जैसे अभी हमने कर्फ्यू पर बताई दी जा, अब तनी हमने सोशल मीडिया पर बताया कि तनी हमने के श्रोता जितना कोई हमने के संगे भा भी इस समय, तो उन लोग के तनी बताओ कबो कबो सोशल मीडिया पर गलत गलत खबर छाप दे रहा था, ई में कानून कौन ची बोला ला?
1: जब बोलिया जा सोशल मीडिया चाहिए जाने के सोशल मीडिया सब जन प्लेटफॉर्म ऑनली जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत बा है, सब कौन होला। और सोशल मीडिया बहुत मोरिशन पॉपुलेशन नहीं जाने लंजा कि लालवा बा, बहुत जना सोचेला कि सोशल मीडिया में सब बस कुछ पोस्टे करे किनो के जहाँ जन फोटो करे, वीडियो करे, पोस्टे नहीं,

0: des affaires de base boule ben ego admi qui droit oui ne au cœur consent bina consent qui bina au cœur photo leke au cœur vidéo karke ha upload kar de pas or ha me public comment karata share karata ha comment toi négatif ba ta hay chai la public qui jane que la loi cyber crime cyber security ba Maurice mais la loi ICT ba Maurice mais or la loi wa jab bullet hay ha crime ha जब क्राइम से बहुत ग्राव है
1: हाई की फाइन
0: बहुत ज्यादा बा जब ब्रीच ऑफ आईसीटी कर ला साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी उकर फाइन मैक्सिमम 1 मिलियन रुपी जाला बहुत है और 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम हम निवेदन करब पब्लिक से टू ले तो बोली ला सोशल मीडिया हाँ एगो फैसन डू कम्युनिके कर
1: AI
0: का जमाना बा टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया तो चाहे ला पैरामीटर में रह के हाँ चाहे ला कम्युनिके करके चाहे ला शेयर करके मैसेज में चाहे ला जाने के जो चीज हम शेयर करते है जेन्युइन बा ऑथेंटिक है अभी देखा कर्फ्यू बा अभी है ढेर वीडियो शेयर के लिए होता बहुत बहुत वीडियो और हमू बहुत देखा था सोशल मीडिया में हम जो ऑब्जर्व कर ले है हाउ में बहुत वीडियो फेक है कुछ ही फेक कुछ ही बोला था फेक पर
1: कैसे
0: फेक है हम देख ली एगो वीडियो हाउ मोरिसवे नहीं है हाउ जो आग बतावा था वंजा हाउ इंसिडेंट हुआ एगो वीडियो इंटरनेशनल लेके हिया मोरिस के को मजे पासे कर रहा था हम के पब्लिक ओ लोग को जिला सेंसेशन करेंगे सेंसेशन मोरिशे जाने ला मोरिशे एगो सोसाइटी है ऐसा है जब हम के को मजे सोशल मीडिया मिलल हम सब नहीं है एगो बोन पोर्सेंटाज ओ लोग निमन से सेवी करता एगो टी पोर्सेंटाज बा ओ लोग सेंसेशन को सिरे लंजा जा एगो प्रॉब्लम होता हाउ सोशल मीडिया वा सकबे हाउ प्रॉब्लम वा के रिजोल्व करे बे हिया ले कॉन्ट्रेयर हो जाता हाउ सोशल मीडिया वा से हाउ प्रॉब्लम वा के अग्रावी करते है जा अब जेक बता जैसे बोलना एआई उता ऐसन जैसे बोलना एडिटिंग ऐसे सांझी करेला जेक बता
1: सच्चा
0: पारित देवेला बे है सब सिटुएशन के उल्लू के दिवार है
1: तो ला पुलिस देने से इस सब जोन फेक न्यूज़ होला कैसे आप लोग मत है जैसे जाने ला जाके ये फेक है
0: जाने ला पुलिस में एगो यूनिटी है साइबर क्राइम यूनिट उलोग प्रोफेशनल हवन सा जब टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया है उलोग के काम हबी स्पेसिफिकमा एगो अफेयर जोन बोला जा उकर नाम है ई पैट्रोल साइबर पैट्रोल कोची है ई पैट्रोल साइबर पैट्रोल है जोन सब जोन वीडियो जोन कॉन्सर्न बा हबी है कर्फ्यू से बहुत वीडियो सिर्कुलेट होता हाउ साइबर क्राइम यूनिट सब वीडियो दिखाता उकन जेन्युइननेस इसकी जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है अब हाउ वीडियो में टू को मजिया पॉपुलेशन के प्रोवोके करता होगा जैसे बोली रहा सर लाइन राशाल के को मजिया ऑगमेंटे करता होगा हाउ फेक न्यूज
1: प्रोवोक
0: करता होगा तो हाउ ला पुलिस एजिटे नहीं होता तुहरा आगे करी और नहीं सोचा कि एगो फेक अकाउंट कर बत ला पुलिस नहीं उलो प्रोफेशनल हवन जा तोहरा के अप्रे लंकेट होय टेक्नोलॉजी इतना फासिल है मूवे काम करे के उतने ही फासिल है अपराधी लोग के पकड़े के हम एगो निवेदन करत है पॉपुलेशन लोग से चाहे अटेंशन करके है लिपोक्वा जाना कौन वीडियो फुल शेयर करत हुआ कौन कमेंट करत हुआ हम बोलब सोशल मीडिया वा के शेयर भी कर पॉपुलेशन के एडे कर L'autorité qui aide car.
1: Tu as essayé comme Milal qu'on a eu aisant information social media d'initié la police que Milal aisant tab ou open cam car liba.
0: Tu as jeune vidéo public jeune share car ta. How we aide car il a l'enquête car qui identifie car qui que manifestation on met bas. Que rose bida car ta que acte d'alerte. Beaucoup jana. Sans sachant que les vidéos sont dans l'état, indirectement, la police qui est aidée. Alors, hum, ego request que le public c'est que tu as légué à une vidéo bas. Sans sachant que la police qui est vidéo, hum,
1: si
0: vidéo,
1: si la police qui est vidéo.

0: कर ला पुलिस के बिदा कर बते है हमी के एदी करी हाउ मालफेतिया लो के आहे
1: थे
0: समाज के सोसाइटी के प्रोटेजे करे के हाउ सेंसेशन वा जानेला हाउ मैं बहुत दिगा होला जैसे बोली राजा ते चाहिला अटेंशन करे के और फेक न्यूज वा बहुत डेंजरस है हबी जब से हाई कर्फ्यू ऑर्डर ले थ्री से हाउ क्वालिटी फेक न्यूज बा हमी के सोशल मीडिया में प्रोवोकेशन जिन क्वालिटी होता और हम एगो
1: सैंक्शन
0: हाँ जे जे हाउ सब फेक न्यूज कर ले हाउ अंजा तो उता अरेस्टेशन हुई हाउ फेक न्यूज नहीं सक बक मजा मिराए के पीछे से लुका के हाउ सब मिसाज विदा करे के जैसे बोली प्रोफेशनल लोग काम कर रहे थे साइबर क्राइम यूनिट में हाउ तो जाने ला टेक्नोलॉजी जितना अवांसे है तो पकड़े वो कोई फासिल हो जाला है बहुत फासिल हो जाला अटेंशन चाहिए करे के पब्लिक के और
1: सावधान
0: चला रहे के और एन जनरल पब्लिक के चाहिए जाने के जब है केवल अभिनय कौन से है नेपोट कब एगो प्रॉब्लम बा एगो ऑफेंस होता पी में एन टांक एन सिटोयन रेस्पॉन्सेबल तुहार डिवोर है हाउ सिटोयन के एडे करे के नहीं कि एगो एक्सीडेंट होल बा अभी लामोड हो गल बा हमी के पी में मोरिस में जैसे वो एक्सीडेंट हो पब्लिक वन नहीं आई एडी करे ब्लेस यू आके कुछ करे लंजा उकर पोता ब्लिकाली
1: फोटो
0: नहीं तो वीडियो लाइव करते लंजा सेंसेशन बोलियन सा ला पुलिस तो आदे होता आई के लैंबुलेंस तो आदे होता आई के ते चाहिए ला जाने के तो रो एगो रिस्पांसिबिलिटी बा तू एगो सिटोयन हवा और चाहिए ला पब्लिक के जाने के एगो एगो एगो मां पब्लिक जो प्रॉब्लम डिफिकल्टी में बा हुआ हवा तुहरा पॉसिबिलिटी बा ओके एडे करे के जे तू एडे नहीं कर ला सकब जब तुहरा पोसुइव करे फेलिंग टू असिस्ट ए पर्सन इन डेंजर क्रिमिनल कोड में बा नॉन असिस्टेंस ओ पर्सन इन डेंजर जो प्लस एडे करे के तू कुछ करत हवा पोर्टेबल की सेंसेशन करत हवा और चाहिला जाने के तुहर लावी ऑन डेंजर नहीं डाल सकब एडे करे तो एडे करिए मैं सिर्फ सेंसेशन नहीं कर पोर्टेबल नहीं लेके वीडियो कर फेक न्यूज सेंसेशन है बहुत डेंजरस है और फिर से बोला था
1: पहला काम अपन नागरिक
0: है हमी के जैसे बोल रहा एगो नागरिक एगो जाने ला मोरिस सब कोई बोला पे पाराजी चाहिए प्रूवे करे के खाली नहीं पापिये में चाहिला पब्लिसिटी करे के पाराजी हाँ पाराजी है सर सिर्फ हमी के एक्शन से चाहिला बताए कि सच्चे के पाराजी है सर एगो प्रॉब्लम बा हमी एन टांक एन सिटोयन रेस्पॉन्सेबल हमी लॉटोरिटी के
1: तो लोग के कोनो हॉटलाइन है होला रहेला के कोन चीज
0: ला पुलिस के हॉटलाइन बोलत है जैसे बोली ला पुलिस के जैसे इन्फॉर्मेशन रूम के लिमोरो है 468-0034 और 468-0035 है ला पुलिस इन्फॉर्मेशन के लिमोरो है और एगो लिमोरो हॉटलाइन बा 148-N148 कोनो भी इन्फॉर्मेशन N48 चाहिए ला पब्लिक के जाने के हाउ फ्री ऑफ चार्ज है और तुहरा एगो इन्फॉर्मेशन बा दे के और तुहरा अनोनिमस को मजे तू नहीं नहीं चाहते हुआ तुहरा नाम जिविल गे होई सकब गुप्त रखे सकब 148 में टेलीफोने करे ला पुलिस के इन्फॉर्मेशन दे के हुआ तेल प्रॉब्लम होता तो एक्शन ले के और सकब अनोनिमस रहे हम एक निवेदन करते है जा कोनो प्रॉब्लम हो तुहर काचे में सिक्योरिटी पर ला पुलिस के इन्फॉर्मे कर
1: और जैसे फोर्स भी यही मजे सब कोई इकट्ठा हो के तब अपन पुलिस लोग के सब बतावे कौन ची कहाँ कहाँ कौन स्थिति ऐसे होता
0: अभी ऑब्जर्व करते है जा फोर्स भी बहुत लामे देवता ला लॉटोरिटी के ला पुलिस के हमिक रेमेसी ला पुलिस रेमेसी करे था सब फोर्स वीव के जो हमी के एडे करता मंजा मिसेलमा फोर्स वीव के चला जाने के एडे कर मिसेलमा तू ला लोअ हाथ में नहीं ला जे को मजे एगो मैनिफेस्टेंट के आरेते कर ला ओके ला पुलिस के हैनोवर कर तू नहीं जा ओका मारे तू को मजे ला लोअ करत हो
1: हाथ में
0: नहीं चला ली के जाने ला हाउ लिमोशन जो हाउ पानिक रहेला कोलेर में देर हला हो जाला ब्लेसे कर दी बैठा वंजा हमी के

0: लिखे तो बहुत गाव बा जहाँ पर तू एगो तेमुआ रब जहाँ लामे दे के तब आकीजे हो जाए बा प्लीटो एगो प्रॉब्लम हो जाता
1: सब पारे नहीं ना c'est pas que nous gesticuler
0: t'as oublié c'est bolin hein que l'émotion t'as la contrôler car ici j'en ai là où pression mais n'est t'as la comment dire l'émotion qui hein que ouvre power car ici n'est t'as j'ai c'est bolin habi témoin là témoin c'est accusé au gars là la police qui t'as là au car cam car ici c'est le moment fier c'est bolin t'as hein remercier car t'as public qui faut vivre qui beaucoup de m'aide milata or bolab ego chose hein dont nom hein neighborhood watch neighborhood watch surveillance voisinage hayo hamiki go ko juti ha ko chi ha ka che mai l'endroit mai jaise mon seulement boli la ja hua par ego network set kar le ba la police hawo neighborhood watch boli la ja the whole ego whatsapp group ha jaise ko ma jego ka che mai rahela sab voisin lo ke kamarad ke jani la kono problem hota ta o lo
1: WhatsApp
0: WhatsApp niman si servi kala tawan jaha WhatsApp group mein kono problem hota kono véhicule louche si akile hota ta haw mein bida kar di lansa ta public ka haw la police ke bida kar la ta action le ila ja hum population se encourager karab hay jun bulat hai neighborhood watch community policing sub government plan me ba police strategic plan me ba hum encourager karab तो लोग के चाहिला है सब तो लोग के काचे में एम्प्लीमेंट करेंगे जाने ला है स्टैटिस्टिक बट ले बा जहाँ जहाँ पर ने बहुत वाच बा हो वहाँ पर क्रिमिनलिटी बेसे हो बा 100% टर्मिने नहीं हो बा से मैं बहुत बेसे हो बा क्राइम प्रिवेंशन यूनिट हम ही है काम वह हम ही की को ड्यूटी है हम लिमो क्राइम प्रिवेंशन यूनिट दे वट है 454-0766 जे कोई के लौकता उकर काचे में वो लोग इंटरेसे होता नेबाउड वॉच करे कि कमिटी पुलिसिंग करे कि हम ही के टेलीफोने कर हम ही आप से एस्टैब्लिश
1: 454-0766
0: टेलीफोने कर हम ही आप से हाउ एस्टैब्लिश कर अब से ला पुलिस आदसु सीआईडी सब कोई आप से एक्सप्लिके कर अब से पब्लिक के बदला अब से कैसे है चलेला कोई एक्शन चला ले के और है बहुत बहुत हम के सोसाइटी के इदी करता लाभदायक है
1: तो जैसे आज कि इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए सेजन ओगादो जो क्राइम प्रिवेंशन यूनिट से आए हुए बहुत कुछ जानकारी बहुत जानकारी दी तो अंत में जैसे अभी देख लीजा कल देख सकब जब बोले कितनी हमने के देश खतरे से बाहर तो नहीं बोला लेकिन तनी सुन
0: काल
1: में होलबा तो इमें सकेला आप लोगों के काम हो या फिर सब सितवाएँ जो जितना हमने के सिटीजन होता वो लोग अपन हाथ बतावन सा तो एक दो शब्द अंत में
0: हम जैसे बोली रही शुरू में फिर से बोला ला पुलिस ओपेरे होता हाउ स्ट्रैटेजी जीरो टॉलरेंस हम एक नहीं टॉलरे कर अब सा जे कोई ला लॉ के उल्लंघन नहीं करता हम बोला पब्लिक से है कर्फ्यू दवा के रिस्पेक्टे करे के जे रिस्पेक्टे कर बस सब चीज नॉर्मल हो जाए तो है कर्फ्यू दा ऑनलीवे हो जाए सब चीज नॉर्मल हो जाए और हम ही हम बोला चाहिला जाने के मोरिस के रेपिटेशन एन जे में बना खई सब वीडियो वन इंटरनेशनल प्रेस में देजा पासे होता चाहे ला पब्लिक के
1: कैसे जो आपके अनुभव से दिख लग है पहला हला ऐसा ने कोई स्थिति
0: जिक बत है हबी कर्फ्यू ओडर बना जैसे कोविड रहल ते
1: उते अलग रहल अलग रहल कर्फ्यू वार रहल अलग
0: रहल मैं सिर्फ मैं तुझे हाउ रिस्ट्रिक्शन वार रहल मैं खई थोड़ा डिफरेंट बा हम एक नए कुछ है ऐसा है फिर से आए मोरिस में निवेदन करते हैं ला लॉ के रिस्पेक्ट करे ला पुलिस के एडी करे पस कि है सब कोई पे इम्पैक्ट होता और जैसे बोली रही नए चाहिए हम के बुलाए कि हबी लिपुक एग्जाम में है जा हम के लाइक का SC HSC देजा लोग पर स्ट्रेस बा एक एडिशनल स्ट्रेस हो गल बा तो हम निवेदन करते हैं सब कोई के चाहिए ला पे और ला मुनी में रह के l'autorité qui est difficile n'est pas la loi qui est respectée car ta tamik sab koi la pe par diya
1: to hum yahi aasha karte hain ki is program se jitna koi hum logon ka saath diya wo log sab tab is program se labh uthaya hoga वैसे जैसे हम बोली सोशल मीडिया कर्फ्यू के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और जनता की जिम्मेदारियों के बारे में महत्वपूर्ण जान

कारिदि सेजों ओगादुन को धन्यवाद देते हैं। और इस कठिन परिस्थिति में हमें याद रखना चाहिए कि सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आइए हम सब मिलकर मॉरिशस में शांति, एकता और सुरक्षा बनाए रखने में अपना योगदान दें। तो इसी बात पर हम आप लोग से आज्ञा चाहेंगे। वैसे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में यूसुफ उरुसा, जिनेश नर्वता खेदना और निष्ठा का साथ रहा, सबको ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। एक और मुलाकात तक हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Check your time. It's exactly 4 p.m. आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ. नमस्कार.
3: नमस्कार है. नमस्कार आप सभी सुनने वालों को. जहां 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक कल रात देश में हालात काबू में रहे और किसी बड़ी घटना की खबर नहीं मिली. कर्फ्यू कल शुक्रवार 16 अक्टूबर तक रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं. इस बीच कस्कावेल, कोकायू, सुल्फेरिनो, मोतेबिलो और श्रीमैंगोनी में गन्ने के खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आई, जिन पर जल्द काबू पा लिया गया. कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 9 को हिरासत में रखा गया और आज अदालत में पेश किया गया. बाकी लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. प्रधानमंत्री दफ्तर ने लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की अपील की है. कोलंबिया में गोली लगने से घायल इलुजी टोमा की हत्या में लगातार सुधार. स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने बताया कि आज सुबह इलुजी ने सहारे से चलना शुरू किया और पानी भी पी पा रही है. उनके दोनों हाथ और पैर भी अच्छी तरह काम कर रहे हैं. गंभीर चोटों और मुश्किल ऑपरेशन के बाद इसे एक बड़ी प्रगति माना जा रहा है. देश में हाल की हिंसा और अशांति की घटनाओं में 16 नाबालिगों के शामिल होने पर ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन ने गहरी चिंता जताई. आज जारी एक बयान में माता पिता से अपने बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की अपील की गई है. देश में हाल की घटनाओं के बाद पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की बिक्री पर नए नियम लागू. आज 15 अक्टूबर से इन तीनों को डिब्बों में खरीदने के लिए नई शर्तों का पालन करना होगा. अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य इन चीजों के खतरनाक इस्तेमाल को रोकना है. हालांकि गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा. तो ये थी कुछ स्थानीय खबरें और अब विदेश की खबरें चलिए सुनते हैं निर्मा के साथ.
4: पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल की छत गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला शिक्षक भी शामिल हैं. हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है. बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच बताई गई है. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रशिया के तेल ठिकानों पर फिर हमले करने का ऐलान किया है. उन्होंने अमेरिका पर मदद और खुफिया जानकारी रोकने का आरोप लगाया. राष्ट्रपति के मुताबिक अमेरिका की अपील पर यूक्रेन ने 3 दिन तक हमले सीमित रखे, जबकि रूस यूक्रेन की ऊर्जा ठिकानों पर हमले करता रहा. वहीं रूस का दावा है कि एक शहर की एक तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन मिसाइलों और यूक्रेन से हमला करने की कोशिश की गई.
3: तो ये थी कुछ देश की खबरें निर्मा के साथ. इसी के साथ ये खबरें समाप्त होती हैं और अब बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. तिरासी साल की 83 years old की श्रीमती पवित्रा देवी बोहरन की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम किसुंदयाल, लोग उन्हें सरिता के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थे कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को दिन के एक बजे एलियंसन्स बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगौद की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. डर्बी स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड में 70 years old के श्री दिलीप मुचुराम की मृत्यु हो गई है. वे पहले CNT में काम किया करते थे. उनके अर्थे कल दिन के एक बजे उन्हीं के मकान फॉरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.

0: से मिले दिल।
1: 4:13 हो चुके हैं। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित होंगे, ख्याल रख रहे होंगे। और आज तो आप सबको मौका मिला है परिवार के साथ बैठने का, थोड़ी सी बातें करने का, थोड़ा सा माहौल कुछ एक ऐसा बनाने का जहाँ पे कहते हैं ना खूबसूरती हो, जहाँ पे परिवार का साथ मिले। तो चलिए जी, इंजॉय करते हैं, दिल की कुछ बातें करते हैं और जुड़ते हैं 90s के गानों के साथ।
0: RM3 Radio.

0: से मिले दिल।
1: 4:21 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिल से मिले दिल के साथ और रेडियो मनोरंजन में मैं हूं आपके साथ पूनम। कहते हैं ना, जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब हम कॉलेज में होते हैं और इतने सारे लोग होते हैं लेकिन नज़र बस एक बार एक ही इंसान पे हुआ करती थी और वो सामने से देख रहा होता था या देख रही होती थी, दोनों में से एक ही हो सकती है बात, बट दोनों तरफ से ऐसा लगता था कि एहसास होता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है दिल के अंदर। तो वो दिलों की तारों को छेड़ने के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए पंकज उदास की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना, इंजॉय कीजिए।
2: RM3 Radio.

0: से मिले दिल।
1: 4:27 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिल से मिले दिल के साथ। एक बात पूछूं, जब कोई आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कितना अच्छा लगता है ना, खासकर तब जब आपका दिन अच्छा ना गया हो और फिर भी वो बिना सवाल के आपसे बस इतना ही पूछे छोटी सी बात में कि मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन मत लो, क्यों टेंशन लेते हो। एक छोटे छोटे सवाल होते हैं और छोटी छोटी बातें होती हैं, चाहे फिर इंसान साइकिल में ले जाए, आपको प्लेन में ले जाए, कैसे भी आपको रख ले, बट आप उसके साथ रहना चाहोगे। यही होती है ज़िंदगी की प्यार भरी बातें।
0: RM3 Radio.

0: से पूछिए भाई क्या खाने वाले हैं और क्या खाना पसंद करेंगे, उन्हीं की पसंद का कुछ बना लीजिए और साथ में रहिए आरुण त्रि, 90s के प्यार भरे गीत आपके साथ हैं और मैं हूँ आपके साथ पूनम। इंजॉय कीजिए अपने गाने जिया जले चान जले।
1: RM3 Radio.

0: जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं हमें सुन रहे हैं, आराम से गाड़ी चलाइए, कोई जल्दी नहीं, घर पहुंचकर थोड़ा आराम कीजिएगा, दिन भर की थकान को उतारिएगा और हमारे अपने दिल में रखिएगा आरएम थ्री हमेशा आपके साथ है। रेडियो मनोरंजन की बात ही कुछ अलग है। ये गाना अगला आप सबके नाम।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: आज के दिल से मिले दिल हमारा साथ यहीं तक था। उम्मीद है 90s के इन प्यारे गीतों के साथ आपकी शाम अच्छी बीती होगी। मैं थी आपके साथ पूनम। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से नमस्कार, फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: इस समय शाम के 5 बज रहे हैं।
2: राम रसधारा

0: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। रेडियो मनोरंजन के सभी भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सियाराम, जय जय हनुमान, जय माता दी। स्टूडियो में उपस्थित चार बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। माला जी, शिवानी जी, सीता जी और सुनीता जी, जय सियाराम,
1: जय सियाराम।
0: आज के इस सत्संग का श्री गणेश करते हैं। श्री राम जी की स्तुति, श्री हनुमान जी की स्तुति, सुमिरनी और रामायण संदेश के साथ। जय सियाराम,
1: जय सियाराम।

0: सूरजधारा।
1: श्रोताओं, आज हम नवरात्र की पंचम रात्रि मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम विशेष तौर पर माता स्कंद माता की आराधना करते हैं। आज हम रामरस धारा के अंतर्गत तुलसी के रामचरितमानस के बालकांड के उस प्रसंग पर प्रकाश डालेंगे, जहां श्री राम और भ्राता लक्ष्मण अयोध्या आए हुए हैं ऋषि विश्वामित्र जी के साथ सीता स्वयंवर को देखने। स्वयंवर से पहले माता सीता माता गौरी की पूजन हेतु पुष्प वाटिका जाती हैं फूल तोड़ने, और वहां पर पहली बार के लिए श्री राम जी और माता सीता की नजरें मिलती हैं। प्रसंग को सुनने से पहले चले हम मां के नव रूपों की आराधना करते हैं।

0: रसधारा
1: तो आज के राम रस धारा के अंतर्गत हम तुलसी के रामचरितमानस के बालकान के उस प्रसंग पर प्रकाश डालेंगे जहां श्री राम और प्राता लक्ष्मण अयोध्या आए हुए हैं ऋषि विश्वामित्र जी के साथ सीता स्वयंवर को देखने। स्वयंवर से पहले माता सीता माता गौरी की पूजन हेतु पुष्प वाटिका जाती हैं फूल तोड़ने और वहां पर पहली बार के लिए श्री राम और माता सीता की नजरें मिलती हैं। पुष्प वाटिका में अपनी सहेलियों के संग आई विदेहराज जनक की पुत्री वैदेही और श्री राम जी के नयन लताओं के बीच मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन मन ही मन सीता जी को अपने पिता के शर्त भी याद रहते हैं कि उनका विवाह उसी के साथ होगा जो शिव धनुष उठाएगा। तो किस तरह से माँ आगे बढ़ती हैं, सीता माँ क्या करती हैं, किसकी पूजन करती हैं, चलिए हम सुनते हैं बहनों के साथ। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: राम रसधारा, रसधारा
2: सीता जी को अपने पिता के शर्त भी याद थे कि उनका विवाह उसी के साथ होगा जो शिव धनुष उठाएगा। तो सीता मां भवानी मां की प्रतिमा के सामने बैठकर गौरी माता की आराधना करती हुई ये कहती हैं, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती मां, आपकी जय हो। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय हो हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा के चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जग जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, आपकी जय हो माता। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: माँ गौरी को संबोधित करते हुए सीता माँ कहती हैं, आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है, आपके असीम प्रभाव के वेद भी नहीं जानते, आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते, आप संसार के उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। जय सियाराम,
1: जय सियाराम।

0: सकहि कहि सहस सारदासेष। जय सिया राम।
1: पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। ये सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत है कि जिसमें पति परमेश्वर होते हैं, जगत जननी होने के बावजूद भी माता पार्वती शिव जी को अपना इष्ट देव मानती हैं। जय सियाराम।
0: जय सियाराम।

0: रामरसधारा
1: रामरसधारा के अंतर्गत आज हम बालकान के उस प्रसंग की बात कर रहे हैं जहां पर माता सीता माता गौरी के मंदिर में बैठकर माता से अनुरोध कर रही हैं, उनसे विनती कर रहे हैं जिससे कि वे और श्री राम जी मिल जाए। कैसे करते हैं चलिए हम सुनते हैं बहनों से। जय सियाराम
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम, जय सियाराम।
1: सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। सीता माँ कहती हैं, हे माता भवानी, भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी के प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। अर्थात माता के भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। माँ सीता कहती हैं, देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: जय सिया राम
1: मोर मनोरथ जानहु नीके। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं क्योंकि आप सदा सेवक के हृदय में वास करती हैं। श्रोताओं, आपको याद होगा कि बालकान की शुरुआती मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में बाबा लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता भवानी तो हर भक्त के हृदय में श्रद्धा के रूप में वास करती हैं। सीता माया आगे बोलती हैं, इसी कारण माँ मैंने इसको प्रकट नहीं किया, आपका आवाहन नहीं किया। ऐसे कहकर जानकी जी ने आप उनके चरण पकड़ लिए। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: अब
1: आप इस दृष्टांत का अनुमान कीजिए कि गौरी माँ के मंदिर में माता सीता गौरी माँ के प्रतिमा के चरणों को पकड़कर विलाप कर रही हैं और उस समय क्या होता है सुनिए। गिरिराज जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई, उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। वाह, इसको कहते हैं माँ की शक्ति, माँ की माया कि मूर्ति भी मुस्कुराई और माँ के गले में जो माला थी वो माता सीता पर गिर गई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद उस माला को सिर से पर धारण किया। गिरिजा माता गौरी का हृदय हर्ष से भर गया और वे मुस्कान से बोली, क्या बोली सुनते हैं।
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: जय सियाराम। आपको पता होगा, आपको हमने बताया था कि मंदिर में आने से पहले पुष्प वाटिका में श्री राम जी और माता सीता के नयन की नजरें मिल चुकी थी। तो यहाँ पर माता गौरी मुस्कान से सीता माँ को संबोधित करती हैं। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त है हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। वो नारद ही थे जिन्होंने माता पार्वती और शिवजी को मिलाया था, और वो नारद ही हैं जिन्होंने सीता जी के बचपन में ऐलान किया था कि सीता का वर कोई और नहीं अपितु नारायण, नर अवतार ही में नारायण होंगे। और यहाँ पर माता भवानी सीता जी को आश्वासन देती हैं कि जो उसके मन में बस गया है वही धनुष को उठाने में सक्षम होगा। जय सियाराम।
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: सो माता गौरी आगे बढ़ती हैं और सीता माँ को क्या कहती हैं कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और रहने का जान तुम्हारे शील और रहने को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राज महल को लौट चली। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। ऐसे माता गौरी ने माता सीता को आश्वासन दिया कि जो उनके हृदय में वास करते हैं वही राम उनको वरमाला पहनाएंगे। जय सियाराम
1: जय सियाराम।

0: रसधारा
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। श्रोताओ, मानस के लंका कांड में एक बार ऐसा हुआ जब लंकापति रावण राम जी की सेना पर हावी हो गए थे। उस दिन शाम को लौटते समय श्री राम जी ने दादा जामवंत से कहा कि आज उसे अनुभूति हुई कि वो रावण नहीं थे जो युद्ध कर रहे थे, अपितु शक्ति थी जिसके गोद में बैठकर, जिसके गोद में सवार होकर रावण युद्ध कर रहे थे। जब जामवंत दादा की सलाह पर राम जी ने 9 दिनों के लिए शक्ति की आराधना की, जिसके अंतर्गत राम जी ने 108 कमल के फूल मां को अर्पित किए। जब अंतिम फूल अर्पण करने की बारी आई तो माता जी ने श्री राम जी की निष्ठा को परखने के उद्देश्य से उस कमल के फूल को गायब कर दिया। तब रघुवर जी का निश्चय डगमगाया नहीं और उन्हें याद आया कि कौशल्या माता हमेशा कहती थी राम जी की दो आँखें कमलों के समान हैं। राजीव नेतम रघुवंशनाथम। तो राम जी ने अपनी एक तीर निकाली, एक आंख को निकालकर अर्पण करने के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर उसी समय मां प्रकट हो गई और श्री राम जी को रोक दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि उसी की अंततः जीत होगी। इसी के बाद ही 9 दिनों की नवरात्रि मनाने जाने लगी और 10वें दिन पर लंकापति रावण पर विजय के उपरांत दशहरा मनाने जाने लगा। दशहरा मनाया जाने लगा जिसे हम विजयादशमी कहते हैं।

0: रसधारा।
1: थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारी धरोहर किरण जानकी जी की प्रस्तुति में, और उसके पश्चात भोजपुरी गान, भोजपुरी गान के बाद समाचार। अंत में बस हम यही प्रार्थना करेंगे कि माँ का आशीर्वाद और उनकी कृपा सब पर बनी रहे। शांति पाठ शुरू में उपस्थित चार बहनों के संग, जय सियाराम, जय जय हनुमान, जय माता दी,
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम, जय जय हनुमान, जय माता जी।
1: 94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने चली जा देश के दक्षिण के ओर पॉइंट डिस्नी घोंपो में, और पॉइंट डिस्नी घोंपो ये सब इलाका के जब बात करबा तो हमने के इतिहास से जुड़ल एगो जगह याद आवेला जो ये घोंपो में पावल जाला, और उकर पर आज हमने के कार्यक्रम रही। वहाँ पर एगो हिस्ट्रिक और नेचुरल हेरिटेज बा, जहाँ पर देश में जनता लोग रलन जा, उ लोग उतरल रलन जा। बात करत है जा 1598 में, जब डच लोग के 5 जहाज पहला हला घोंपो के तट पर पहुँचल रहल। ई सब जहाज के जो मागे लोग रलन जा, जो नौ सैनिक लोग रलन जा, उ लोग स्कर्वी से पीड़ित रलन सा। स्कर्वी एगो ऐसन बीमारी है जो तब होवेला जब आप विटामिन सी नहीं खात हवा, ताज़ा फल सब्जी आपके नहीं मिलता। और आगे के समय में ये जो मागे लोग रलन सा, वो लोग जब सफ़र पर निकल रलन सा, तो वो लोग के कितना समय तक जो ताज़ा फल सब्जी बा वो नहीं मिले, रूखा सूखा खात रलन सा, ये वजह से वो लोग के स्कर्वी हो जात रहल। तो जब ई स्कर्वी से पीड़ित जहाज घोंपो पहुँचल तो हुआ पर बहुत उम्मीद बढ़ गल ये सब सैनिक लोग के, कहे कि वो लोग समझलन जा कि अब एगो टापू पर वो लोग उतरत हवन सा, यहाँ पर वो लोग के पानी मिली, फल मिली, सब्जी मिली। तब 1598 जिजुइट में जहाज़ के कमांडर वॉविक रहल घोंपो के उ नाम देलन वॉविक हवन। तब से डच के आवाजाही लगे लगल मॉरिशस में, और 1638 से 1633 में डच मॉरिशस में आके बस गएलन सा। ये सब इलाका में पॉइंट डिस्नी, इल दे ला पास, इलो फुके, इलो वाक्वा, सुफ्लेयर के आसपास भी, रिविया दे जांगी, बेदुजा कोते में, और गवर्नर पीटर द गुयेर के बोलल गल कि घोंपो सबसे बेहतर जगह बा उ लोग खातिर, कहे कि यहाँ पर जहाज़ के मरम्मत आसानी से होई, यहाँ पर वो लोग से कैंसर शिकार करे, खेती बाड़ी खातिर भी ये जगह अच्छा बा। तब पीटर गुया यहाँ सबसे आगे एगो फोर्ट बनवेलक अपन सुरक्षा खातिर, अपन घर खातिर। 6 ऊंचा और 7 चौड़ा फोर्ट के भीतरे उनकर लॉज बनावल गल, उनकर घर 6 लंबा और 18 चौड़ा। यहाँ गवर्नर के संगे जो नौसैनिक लोग रलन सा, सेलर्स लोग, और उ लोग के संगे जे भी रहल उ लोग रहत रलन सा। यहाँ घर के संगे खाना पीना के एगो गोदाम बनावल गल, कानों और कितने औजार भी यहाँ पर रखा गल। अभी ले हुआ फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक जेबा, तो ये सब फोर्ट और महल और कानों के अवशेष पैबा। और यहाँ पर जब डच लोग अलन सा, तो वो लोग के संगे उ लोग के गुलाम लोग भी रहल, तो गुलाम लोग खातिर भी जगह बनावल गल। आज यहाँ जेबा तो एगो म्यूजे बा, एगो म्यूजियम जेके नाम देवल गल बा फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक, और वैन डर स्टेल द्वारा 1642 में ई फोर्ट बनावल गल, और प्रिंस मॉरिस दे नासो के ई भाई रहल फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक के, जेकर नाम पर ई फोर्ट के नाम रखा गल। प्रिंस मॉरिस दे नासो ही हमने के मुल्क के मॉरिस नाम देलक, और भले ही यहाँ 2 फोर्ट बनावल गल, लेकिन ई कबो इतना मजबूत नहीं रहल, कहे कि यहाँ औजार और सैनिक बहुत कमती रहल। अब यहाँ मॉरिशस तो एगो ट्रॉपिकल देश है, यहाँ तूफान हरर को चलावे, तो तूफान

0: की वजह से यहाँ पर बहुत तबाही मचत रहा और फिर फ्रेंच लोग भी यहाँ पर आए लगलन सा एबोनी के व्यापार करे लगलन सा जगह व्यापार डच लोग करत रहा। अब दूसरा बात तो यह है कि यहाँ पर जो डच लोग रहन सा जो गुलाम लोग रहन सा डच के आनल वो गुलाम लोग हमेशा बगावत पर उतर आवत रहन सा और बगावत के तौर पर वो लोग ये फौज पर आग लगा देवत रहन सा। तो डच लोग परेशान होके मॉरिशस में भले ही बसे के प्रयास कर लन सा लेकिन उन लोग के पर छोड़ के ये देश चल जाएगी। आप जाने रहा परले हवा इतिहास में कि पहला बात जब बोल गल बाकी हमने के मॉरिशस के जो डोडो पक्षी रहल वो कैसे मरल तब बोल जला कि डच लोग ही ओके मोइलन सा और साथ में डच लोग यहाँ पर जो चूहा और मांगूस के अनलन सा तो ये लोग वो डच के अंडा खाए लगल रहन सा। तो एक तो बोल जला कि डच डोडो के मुआ के खा लेलक फिर अगर अंडा ये सब मांगूस और चूहा लोग खा लेलन सा और फिर यहाँ पर वो लोग हरिंग भी अन ले रहन सा और हरिंग तो यहाँ पर आज भी बा और एबोनी के व्यापार डच के साथ साथ फ्रेंच भी करे लगल। तो ये रहा कहानी फोर्ट फ्रेडरिक हेनरिक और व्योगोंपो के जहाँ पर डच लोग पहला हला उतरल रहन सा और आज भी ये इलाका डच लोग के पहला कदम पड़े खातिर जानल जाला। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

0: कमरा देखा
1: के 6 बज रहे हैं समाचार सुनिए नमस्कार 15 अक्टूबर शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर देश में पिछली रात हालात पहले से काफी शांत रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा करीब 10 इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिशों पर पुलिस ने जल्द काबू पाया सरकार अब संदिग्धों के खिलाफ पोटा के तहत कार्रवाई करने पर विचार कर रही है 14 अक्टूबर की शाम से अब तक 42 लोग गिरफ्तार इनमें एक नाबालिग भी शामिल 37 लोग हिरासत में जबकि कर्फ्यू तोड़ने के मामले में 12 लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा

0: dans le vieux mai, Elodie Thomas ko goli lagne ke mamle mein IPCC ne do alag alag jaanch shuru ki. Safe City cameras ki footage mangi gayi aur police station se dastavez judaye gaye. Jaanch se jude kuch police karmiyon ke videsh jaane par bhi nazar rakhne ke liye kadam uthane ko kaha gaya hai. देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने की कोशिशों को कलाकारों का समर्थन जेजीव रेजुम और यूनियन डेज ऑफिस के सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से मुलाकात की और सरकार को अपना सहयोग देने की इच्छा जताई पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरने से 30 लोगों की मौत इसमें एक महिला शिक्षक भी शामिल नमस्कार प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि पिछली रात देश में हालात पहले से काफी शांत रहे करीब 10 इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिशों पर पुलिस ने जल्द काबू पा लिया प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर राहत जताया है कि कल गिरफ्तार किए गए लोगों में कोई नाबालिग नहीं है उन्होंने बताया कि सरकार संदिग्धों के खिलाफ पुटा के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई करने की संभावना पर विचार कर रही हैं प्रधानमंत्री ने पुलिस और सुरक्षा बलों की मेहनत की सराहना की और कर्फ्यू का पालन करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया फिलहाल हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को सुनते हैं
1: que la nuit dernière fin déroule bien plus calmement. Je remercie tous les bon Mauriciens qui observent le couvre-feu dans l'ordre et discipline. Je remercie aussi les forces de l'ordre qui font renforcer l'efficacité de l'eau terrain. Finalement, une tentative pour mettre des ordres dans moins qu'une dizaine de localités qui font maîtriser rapidement par la force policière KSMF. Finalement, 26 arrestations pour violation du curfew et Moka Djero avec soulagement qui peine aucun mineur parmi. Mon avis informe la population qui m'a l'autorité concernée et envisage poursuivre dans les métiers sous Prevention of Terrorism Act, c'est-à-dire la loi contre le terrorisme. En toute transparence, je veux dire que la police est une force spéciale puis avancer le ban l'enquête, le baron de la drogue là, qui a l'origine de tout ça des autres là et qui fait servir nos enfants dans un but criminel. Comme vous autres connaissez, il y a beaucoup d'arrestations et démantèlement de ban réseau de la drogue, mais laisse-moi dire clairement, pas pour une aucun répit pour ban mort sans la drogue, peine en place que je pour capable cacher. Travail est commencé et pas pour arrêter jusqu'à tout sa bande mort sans la drogue là, derrière barreau. Je remercie encore une fois la force vive et tout le monde qui finit mobiliser dans notre quartier et dans notre propre famille pour éviter la violence. Je refais l'appel à chaque Mauricien pour qu'ils aient respecté le curfew jeudi soir dans la même discipline et solidarité. Que nous pouvons trouver depuis des jours. Moi, nous autres, rendez-vous demain, après le Conseil des ministres, pour un suivi de la situation. Bonne soirée et merci.
0: देश में मौजूदा हालात के मद्देनजर जगह-जगह पर पुलिस के तैनाती हैं सुनते हैं डीसीपी जगरू को
2: Quel objectif ça couvre là?
3: Oui, nous mettons le commissaire met un l'autre point couvre pas pour de rien. Parce qu'il y a une démonstration des bonnes personnes le chemin, et les bonnes personnes peuvent obstruer le chemin.
4: पुलिस कमिश्नर ने यूं ही एक कर्फ्यू लागू नहीं किया है सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बाधाएं डाल रहे हैं जो गैर कानूनी हैं। सड़कों पर लोग पहिए जला रहे हैं पुलिस स्टेशनों में आग लगाई गई, पुलिस की गाड़ियां जला दी गईं। पुलिस कमिश्नर के पास कर्फ्यू लगाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था प्रधानमंत्री ने जैसे बताया कि ज्यादातर लोगों ने कर्फ्यू का पालन किया है कर्फ्यू के दौरान लोगों को घर के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए और पुलिस पूरे देश में कष्ट लगाती है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो हम जनता से मांग करते हैं कि आज रात भी कर्फ्यू लागू होगा और इसका पालन करना चाहिए

0: Donc, nous faisons une requête à la population, comme hier, et aujourd'hui, comment une finitière qui peut dans le coup fait ce soir et demain soir, nous demandons à la population qu'ils ont respecté sa bande lourde-là.
1: 14 अक्टूबर की शाम से पुलिस की कार्रवाई के दौरान 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनमें एक नाबालिग शामिल रहा। गिरफ्तार लोगों में से 37 को हिरासत में रखा गया। इस बीच डीपीपी दफ्तर ने कर्फ्यू तोड़ने के मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है। इन्हें कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा। इस अपराध के लिए अधिकतम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले सुर्खियों में कि देश में हाल की घटनाओं के बाद पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की बिक्री पर नए नियम लागू किए गए हैं। आज 15 अक्टूबर के इन तीनों को डिब्बों में खरीदने के लिए नई शर्तों का पालन करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य इन चीजों के खतरनाक इस्तेमाल को रोकना है। हालांकि गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
2: एबेन के इस पेट्रोल पंप पर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाला एक ग्राहक केवल 2 कान डीजल ही खरीद सका, यानी उसे सिर्फ 20 लीटर डीजल मिला। इस गुरुवार से कैन में ईंधन खरीदने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। ग्राहकों को अपना पहचान पत्र और ऐसा प्रमाण दिखाना होगा जिसे ये साबित हो सके कि ईंधन किसी अधिकृत व्यावसायिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पात्रों में ईंधन बेचने वालों को खरीदार के कॉन्टैक्ट, उसकी व्यावसायिक गतिविधि, संबंधित उपकरणों और लेन देन की पूरी जानकारी भी दर्ज करनी होगी। डानी केंद्रामा कहते हैं, वे हमें आईडी कार्ड देते हैं, हम आश्वस्त करते हैं कि वही लोग हैं। उन्हें बताना होगा कि इसका प्रयोग वे कैसे करेंगे। कैमरा है, देखते हैं कि कोई समस्या तो नहीं है। 20 से ज्यादा लीटर तक नहीं दे रहे हैं। ईंधन रखने वाले बर्तनों को उपयुक्त होना चाहिए और सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना भी जरूरी है। कुछ लोग बोतल लाते हैं, उनमें हम नहीं देते, ऐसे पात्र में देते हैं जो सच में काम के लिए प्रयोग किया
3: जाएगा।
2: ये पाबंदियाँ केवल कैन या अन्य पात्रों में ईंधन की बिक्री पर लागू होती हैं। वाहन चालकों को पहले की तरह सामान्य रूप से अपने वाहनों में ईंधन भरने की अनुमति है।
1: कॉलोव्यू में पुलिस की गोली से एलोजी टोमा के घायल होने के मामले में इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन ने 2 अलग अलग जांच शुरू की है। कमीशन को 2 शिकायतें मिली हैं, जिनमें एक उस वैन के चालक की है जो घटना के समय एलोजी को घर छोड़ने जा रहा था। आईपीसीसी ने इलाके के सेफ सिटी कैमरों की फुटेज मांगी है। जांच अधिकारियों ने कॉलोव्यू पुलिस स्टेशन से इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी जुटाए हैं। कमीशन ने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि जांच से जुड़े कुछ पुलिस कर्मियों के विदेश जाने की जानकारी देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। हाल में घटनाओं के बीच शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग जरूरी। इस सिलसिले में आज जेजीव रेजोम ग्रुप और यूनियन डेज ऑफिस के सदस्यों ने ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। उन्होंने देश में शांति और एकता बनाए रखने की सरकार की कोशिशों में अपना समर्थन और सहयोग देने की इच्छा जताई। इस हफ्ते की शुरुआत से अब तक गन्ने के खेतों में लगी आग से 17,450 टन गन्ना जल चुका है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान देश के पश्चिमी इलाकों में हुआ है, जहां सिंचाई के कई पाइप भी जल गए। कृषि मंत्री अरविंद बुले ने जांच आज गन्ना किसानों और कृषि उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। गन्ने की कटाई का काम अभी 50% पूरा हुआ है। कृषि सदन के मुताबिक जले हुए गन्ने को जल्द से जल्द काटना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गन्ने का इस्तेमाल किया जा सके। बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। एक हालिया अध्ययन के अनुसार मॉरिशस में डायबिटीज की दर घटी है, विशेषकर महिलाओं के मध्य। सुनिए रिपोर्ट।
2: न्यूग्रोव स्थित ये विशेष क्लिनिक उन 5 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में से एक है जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज के उपचार और देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फौजी पिहाली कहते हैं, मुझे चोट लगी थी, अस्पताल गया तब पता चला कि

0: हाइपरटेंशन और डायबिटीज हैं, तब से सभी इलाज करवा रहा हूं, आंखों की जांच आदि करवा रहा हूं। ये बीमारी आमतौर पर वयस्क अवस्था में धीरे धीरे विकसित होती है। इसमें रक्त में शक्कर यानी ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है। डॉक्टर मोहम्मद यासिर उजिया कहते हैं, अगर किसी को 8% से ज्यादा डायबिटीज का पता चलता है, तब उन्हें डायबिटीज सेंटर भेजा जाएगा, जहां उन्हें ज्यादा गहन सेवा दी जाएगी, जिससे उनका डायबिटीज नियंत्रित किया जा सके। फिर उन्हें उनके इलाके के हेल्थ सेंटर में भेजा जाएगा। प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिका द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में हाल में ही प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मॉरिशस में 12 वर्षों के दौरान मधुमेह के मामलों में 3% की अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि हालिया सर्वे में टाइप 2 डायबिटीज घटकर 19.9% तक पहुंच गया है। पहले ये 23.3% था और प्री डायबिटिक के लिए भी ऐसा ही है। 2009 में ये करीब 24.9% था और 2021 में किए गए सर्वे में ये 15.6% थी।
1: Donc là aussi, nous trouvons une stabilisation et ensuite une réduction de la prévalence des diabètes.
0: चिकित्सा के क्षेत्र में मिली ये उत्साहजनक सफलता अप्सा इंटरनेशनल जैसे गैर सरकारी संगठनों के लिए भी प्रेरणादायक है। ये संगठन 3 वर्षों से ज्यादा समय से टाइप 2 डायबिटीज के खिलाफ लड़ाई में जुटा हुआ है। अप्सा इंटरनेशनल की अध्यक्षा उद्रे अज कहती हैं, हमारे यहाँ सकारात्मक नतीजे देखे जा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, वे अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सजग हैं। मॉरिशियनों को जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज खामोशी से फैलने वाली बीमारी है। इसके सिम्टम्स नजर नहीं आते और हमेशा इस जाल में लोग फंस जाते हैं। जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, जटिलताएं शुरू हो जाती हैं। समय रहते जाँच करवा लेनी चाहिए। उचित उपचार और सही देखभाल से मरीजों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।
2: कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि देश में हाल की घटनाओं के बीच शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। इस सिलसिले में आज जेजीव रिजम ग्रुप और यूनियन दिस ऑफिस के सदस्यों ने ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। उन्होंने देश में शांति और एकता बनाए रखने की सरकार की कोशिशों में अपना समर्थन और सहयोग देने की इच्छा जताई है।
3: एक घंटे से भी ज्यादा देर तक प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जेजीव गैजोम संगठन और कलाकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस मुलाकात का मकसद देश में हालिया घटनाओं पर उनके विचार सुनना रहा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने उनके सुझावों को ध्यान से सुना और जानना चाहा कि अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए वो अधिकारियों के साथ किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं। कैथोलिक आंदोलन जेजीव गैजोम, जिसमें तकरीबन 3,000 सदस्य हैं, उसने हालात को पुरसकून बनाने में अपना योगदान देने का इरादा जाहिर किया।
4: L'écoute et la visite au terrain. Nous, dans cette région de l'île, et comment nous sommes, et que les familles aussi actives hein, au niveau des autres familles. Nous, on vit faire l'appel aujourd'hui à toute la population mauricienne. Hein. Cet appel, c'est que toutes les familles nous capables de vivre dans la paix. Et pour vivre dans la paix, moi, quoi, c'est important que chaque famille soit capable de réunir et surtout, guette d'autres enfants. Hein, comment les enfants, c'est important. Hein, commence, comment dire, et d'autres à vivre en valeur l'essentiel aujourd'hui.
3: कलाकारों की तरफ से सोशल मीडिया पर अभियान पहले से ही शुरू हो चुका है। कई मशहूर आवाजें और चेहरे आगे हैं ताकि लोगों तक अमन का पैगाम पहुंचाया जा सके, खास तौर पर नौजवानों तक।
5: Quand on est en colère, on écoute un petit la musique qui fait au sens bien. Nous, autistes, nous là pour ben jeunes, pour faire montrer eux, si eux pas connaissent la musique, nous pour montrer eux qu'il y a en tant que DJ, en tant qu'un musicien, montrer eux comment jouer la musique, faire eux participer pour être capable de gagner sa feeling de la paix, de l'amour et de la sérénité dans eux-mêmes.
6: pas capable de rester insensible à ce qui peut passer. Nous, ben, nos autistes, nous appelons, nous faisons appel à l'unité. Et tout le temps, le message est comme ça. Nous ne sommes pas capables de dire que nous ne comprenons pas nos banzènes, nous ne sommes pas tanzènes.

0: parce que là, la situation une fait qui nous peut bien insister, rejoindre avec eux, regagner sa connexion là, pour nous capables montrer eux qui nous là, qui nous tendent la voie. L'île Maurice, c'est pour tout le monde, à nous construire ensemble et nous guette l'avenir nos pays.
1: Deputy Prime Minister ने उनके इस कदम का स्वागत किया। उनका कहना है कि मुर्शन समाज में इन लोगों की मजबूत पहचान और परिवारों के बीच उनकी बात सुनी जाने की अहमियत नौजवानों को

0: करने में मदद कर सकती हैं। उन्होंने सभी लोगों, खासतौर पर माता पिता से एक दूसरे को समझने और अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की।
1: Le ZVZ est présent dans différentes régions du pays et de la voix être entendue par un adulte et nous connaissons également qu'il y a un artiste qui peut donner un coup de main depuis hier, qui peut lancer un appel à l'apaisement, qui peut faire un appel à un jeune pour ne pas les autres être manipulés. Donc, ça m'a dit qu'il fait une rencontre, le Premier ministre là, qui exprime le souhait de donner un coup de main, déjà présent dans la communauté, dans tous les quartiers à travers l'île.
2: Je connais l'île Maurice, c'est mon pays, ça, je suis content, mon pays, moi.
0: जमीनी सतह पर काम शुरू हो चुका है। प्रतिनिधि अपना अभियान जारी रख रहे हैं ताकि हालात फिर से पुरसुकून हो सकें और लोगों के बीच अमन, भाईचारा और एकता को बढ़ावा दिया जा सके।
3: चौदह अक्टूबर की शाम से पुलिस की कार्रवाई के दौरान 42 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। इनमें एक नाबालिग शामिल रहा। गिरफ्तार लोगों में से 37 को हिरासत में रखा गया। इस बीच डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP ने कर्फ्यू तोड़ने के मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है। इन्हें कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा। इस अपराध के लिए अधिकतम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है।
4: 14 अक्टूबर की शाम पुलिस द्वारा चलाए गए अभियानों के दौरान एक नाबालिग सहित 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 37 को हिरासत में रखा गया है। इन पर कर्फ्यू का उल्लंघन करने, दंगों में शामिल होने और आक्रामक हथियार रखने जैसे आरोप हैं। वहीं कर्फ्यू का पालन नहीं करने के मामले में 12 संदिग्धों के खिलाफ DPP का कार्यालय मुकदमा चलाएगा। उन्हें कल शुक्रवार 16 अक्टूबर को इंटरमीडिएट कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इसके तहत मोबाइल पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। SMF और SSU की तैनाती की गई है। त्वरित कार्रवाई करने वाली टीमें लगाई गई हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की।
3: पाकिस्तान के पेशावर में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला अध्यापक भी शामिल हैं। हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। बच्चों की उम्र 6 से 12 साल के बीच बताई गई है। बचाव दल ने मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम पूरा कर लिया है। तुर्की के इस्तांबुल में भारी बारिश और बाढ़ से 2 लोगों की मौत। शहर में पिछले 80 साल से ज़्यादा समय की सबसे तेज बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में सड़कें और घर पानी में डूब गए, जबकि गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई। मरने वालों में 14 साल का एक लड़का भी शामिल, जिसकी पानी में बिजली का करंट लगने से मौत हुई है। और अब चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा।
4: आम हालत, मास्कारिंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य हवा का असर है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और हल्की बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके खुली जगहों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 6:11 पर और कल सुबह सूर्योदय 5:38 पर।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में. तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे ल्यूडोविक, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर.

0: choc sa macha suni. Avenue de Rosé, Rosano, la Cavian Vakwame, la Cavian Vakwame, Ikean B. Saleki, 91 years old, ki, Goindama Ramsomi. Gwendama Ramsomi, Pedaish Ram Kalimutu, Logun He Atemani Kinam Sadik Janti, Tikim Ritu Hogayon Kerti, Kaladin Ki Despache, Despache Unki Beti, Supaya Kalimutu Ki Makan, Lakavian Vakwase Uthakar and Timson Skalkeli, Phoenix Kishum Shambhumi Lijay Jagi Cremation tomorrow at 10 AM. Derby Street for a Side Me, Derby Street for a Side Me, 70 Salki, 70 years old, Ki Shri Dilip Muchuram. श्री दिलीप मुचुराम की मृत्यु हो गई है वे पहले सीएनटी में काम किया करते थे उनके अर्थी कल दिन के एक बजे उन्हीं के मकान डर्बी स्ट्रीट फोरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीकाहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM 83 साल की 83 years old की पवित्रा देवी बोगन की मृत्यु हो गई है पैदा शाम बिचू की सुंदयाल लोग उन्हें सरिता के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थी कल दिन के एक बजे एलियनसन बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदुगौद की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM कैस्ट्रेल रोड कॉम्बियाटो ब्रितानिया में 75 साल की 75 years old की तारामती भजन की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम नारायण लोग उन्हें प्रेमिला के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति जगदीश भजन के मकान ब्रितानिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM बोबोआ सेंट पियामे 62 साल की 62 इयर्स ओल्ड की देवी भट्टू पैदाइश नाम भदोरी लोग उन्हें कविता के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान बोबोआ सेंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंस्टांस सेंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM नंबर 16 एवेन्यू नबी Quand le vieux me, 70 साल की 70 years old की सीता बिसेसर की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम अजोदा उनकी अर्थी शनिवार 17 अक्टूबर को सुबह के 9:30 कॉलव्यू फ्यूनरल पॉलर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलव्यू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन ऑन सैटरडे एट 9:30 AM मताबदल स्ट्रीट विलनुआ मेबर्ग में 67 साल के 67 years old के धीरज मताबदल की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें अशोक के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थी कल दिन के दो बजे उनकी पत्नी प्रेमिला माता बदल के मकान मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पृथ्वीलिया मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
4: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन अपने घर ही मिला लीजिए इस वक्त शाम के 6:26 हो गए हैं

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं नई सोच कार्यक्रम अभी के साथ। रात के 7 बजे तक हम आपका साथ देंगे फॉर योर नई सोच कार्यक्रम। फिर उसके बाद 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक वी विल बी हैविंग योर दिलों की आवाज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल हम लोग नवरात्र में हैं, और ऐसे समय पर आप लोग भी हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। और नई सोच कार्यक्रम है, एक विचार हम लेकर के आते हैं, और आज का जो विचार है, आज की जो नई सोच है, वो है क्यों

जीना इसी का नाम है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जीना, हमारी जिंदगी, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से उस समस्या का सामना करने के लिए खुद पर भरोसा रखे, अपने आप पर वो विश्वास रखे कि हाँ, मैं उस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इट्स ओके यार। और इसीलिए इसके लिए आपको एक टैबलेट मैं आपको देता हूँ, एक बहुत ही सिंपल टैबलेट है, बस लबों पर एक मुस्कान लेकर गए, जस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर आप अपने चेहरे पर, अपने लबों पर एक मुस्कान लेकर के आएंगे, ऑटोमेटिकली आपको एक ऐसी शक्ति मिलेगी जहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, जो मीडियम हैं, जो स्ट्रैटेजी हैं, आपको मिल ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम एक ही दिन में सॉल्व हो जाएगा, मे बी इट कैन टेक वन डे, टू डेज, वन वीक और वन मंथ। अरे भाई, सॉल्व तो होगा ना, इसी को प्रॉब्लम कहते हैं। प्रॉब्लम्स का जन्म हुआ है सॉल्व होने के लिए, नहीं तो सॉल्व नहीं होता, उसका नाम प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, सो हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड जस्ट एंजॉय द नेक्स्ट ट्रैक जो मैंने आप लोगों के लिए स्माइल आने के लिए डाला है। ये एक ऐसा गीत है, मुझे पता है ये मूवी आप लोगों ने देखा होगा, और इस मूवी को देखने के बाद आप लोगों को लगा होगा कि हाँ, प्रॉब्लम्स कितने भी सीरियस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए लबों पर एक मुस्कान लेकर के आएंगे, ऑटोमेटिकली आपको एक अलग तरह की एक शक्ति मिलेगी।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

0: जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। हमारे देश में भी ये यूनिटी, ये अखंडता, ये एकता का होना बहुत ज़रूरी है। हम आपके साथ हैं, हम आप हमारे साथ हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नमस्ते और आदाब। दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, हम आपका साथ देंगे यहाँ पर रात के 9 बजे तक। और ऐसे टाइम पर 402-80-70 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाएंगे। यू मे ऑल्सो सेंड अस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250-6200। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर कौन सा गीत आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर आपकी खिदमत पेश करने वाले हैं।
1: Your news on MBC.
2: ए काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
3: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

जी बिल्कुल, इस वक्त रात के 7:23 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रात बाकी है और बात भी बाकी है और आप लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं अभी के साथ फॉर योर रेडियो मनोरंजन, खासकर दिलों की आवाज़ कार्यक्रम। ये एक ऐसा शो है जहां पर आप हमें बस मैसेज भेजना है ऑन 5250-6200। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे हम यहाँ पर चला देंगे। सो गाइस, अगर आप काम से निकलकर घर की ओर जा रही हैं, ड्राइव सेफली ऑन रोड। एंड ऑफ कोर्स आज ठंडी हवाएं भी बह रही हैं और ऐसे टाइम पर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक में आप हमारे शो को एंजॉय करें, इसके लिए थैंक यू सो मच।

और जी हम भी कसम से, कसम की कसम से, हम आपसे बेमतहाशा मोहब्बत करते हैं और यही मोहब्बत तक खींचे लेकर के चले आते हैं आप सब लोगों से मुलाकात नहीं करने के लिए बल्कि एक फुल एंटरटेनमेंट के लिए। और यहाँ पर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और ये गाना खासकर हम पूनम के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो पाई से हमें याद कर रही है, उनके लवली हस्बैंड मनीष के नाम। साथ ही साथ वी डू हैव परितुष्टी और उनके जो जीज हैं विदाउट फॉरगेटिंग अजय किसुंडियार फ्रॉम रोजबेल। खासकर ये गाना आप लोगों के नाम। हाँ जी मुस्कुरा रहे हैं ना, मुझे बताएं आपको ये गाना बहुत ही पसंद है।

0: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious नवरात्रि।
1: जी हाँ दोस्तों, इस वक्त रात की 7:43 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। रेडियो मनोरंजन की लहरों पर इस वक्त दिलों की आवाज़ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अगर आप ड्राइव कर रही हैं गाइस, ड्राइव सेफली। मुझे पता है कि रोड में इनसिक्योरिटी की जो लहर है छाई हुई है, मुझे पता है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैं आगे अगर जाऊँगा तो कुछ होगा नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, जस्ट बी पॉजिटिव, कुछ भी नहीं होगा। जिस आप इत्मीनान होकर के हमारे गीतों का पूरा पूरा लुत्फ उठाइए और एंजॉय करते जाइए। मुझे पता है कि आप एग्जैक्टली एक मैसेज नहीं भेज पाएंगे, बस अपने दिल की जो बात है सुनते जाइए। हम आपका एक बहुत ही सुंदर गाना चलाने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ नीता लोखन है। उन्होंने कहा उनकी बेटी आयुष एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, आज ही उसका एग्ज़ाम था। सो बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेज और बेस्ट ऑफ लक टू यू आयुष लोखन। और उनके छोटे बेटे यानी कि आहान के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट वीक, पिसा का एग्ज़ाम्स हैं। सो बहुत बहुत बेस्ट विशेज हम आपको के देना चाहेंगे। उनके पापा जी हैं अजय लोखन, विदाउट फॉरगेटिंग उनके लवली और प्यारी फूफू जिनका नाम है संगीता।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

जी बिल्कुल, हमने भी कसम खा लिया है कि हम भी आपके साथ रहेंगे, इस मनोरंजन का पूरा पूरा लुत्फ उठाएंगे। नमस्कार और आदाब, वंस अगेन वेलकम बैक फॉर योर दिलों की आवाज कार्यक्रम, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। इस वक्त हमारे साथ नौसीन है, जो एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है। ये गाना खासकर उनके शोहर के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जिनका नाम है आजाद। वी ऑल्सो हैव जईद, जरीना, और साथ ही साथ उसका नाम, एक और बेटे का नाम है जो मलेशिया से आ रही है, कल उसका नाम मैं भूल गया हूं, एक मिनट में चेक करके आपको बताता हूं। जी हाँ, चेक करने के बाद पता चला है कि जनाब का नाम है जियाद और वो मलेशिया से निकलकर मॉरिशस आने वाला है कल। उनके मम्मी पापा उनके लिए, उनके वेलकमिंग नोट के लिए बहुत कुछ तैयारियां प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। सो चलिए नौसीन, ये गाना खासकर आपके नाम।

जहाँ बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ करिश्मा दावराज हैं, जो स्ट्रांगली कनेक्टेड है फ्रॉम ओम्स जोंसे, और ये ओम्स जोंसे को स्पेल करने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी ओंस जोंसे हो जाता है, ऐसे ओंस जोंसे हो जाता है, लेकिन ओंस जोंसे है जो करिश्मा हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ये गाना करिश्मा

हद से गुजरने के लिए प्यार का होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे साथ मोहतरमा रेहाना पहुंच गई हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की हैं उनकी प्यारी जालिला के नाम। वी ऑल्सो हैव उनकी और साथ ही साथ उनके सभी फैमिली मेंबर्स। दैट्स फ्रॉम रेहाना मोहतरमा जो फिनिक्स के रहने वाली हैं। और ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली किसके नाम। हेलो अभी, दिस इज़ रेनुका फ्रॉम लंदन। आपका शो बहुत ही बढ़िया है, मैं भी आपके प्रोग्राम को सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच रेनुका। ये गाना खासकर हम आपके नाम भी डेडिकेट करना चाहेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुपर्ब सिलेक्शन अभी, दिस इज़ एक गाना पुकार मूवी से ही हो जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। सो वी डू हैव दारन, श्वेता, रवीश, प्रीशा, लविशा और जितने सारे अपाडू फैमिली हैं जो खुशनुआ की हैं। तो चलिए ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आप लोगों के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

चलिए गाना खासकर हम हंसिनी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनके सभी फैमिली मेंबर्स के नाम, और ये गाना उन खासकर उनके लवली सिस्टर के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जिनका नाम है भावना।

जी हाँ दोस्तों, रात बाकी और बात भी बाकी है और आप भी हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त। ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली विक्रांत के नाम, जो इस वक्त नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे हैं फ्रॉम एबेन। और बहुत सारे दोस्त खाने के बाद एक गरम गरम कॉफी का की चुस्की का आनंद उठा रहे हैं और हमारे शो को एंजॉय करें। ये गाना खासकर आप सब लोगों के नाम, जय माता दी।

दोस्तों इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ, फिर इसके बाद भोजपुरी तड़का लेकर आएगी किरण। तब तक अभी को दीजिए इजाजत, कीप एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक, विल बी मीटिंग वेरी सून, बाय।

0: आए।
1: नमस्कार, प्रणाम और जय माता दी। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस खास नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी अपनी उषा कौर और आज हम लेकर आए हैं भक्ति, आस्था, प्रेम और माँ के आशीर्वाद से भरा एक सुंदर सफ़र। जी हाँ, नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में हम माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना करते हैं। हर स्वरूप हमें जीवन की एक नई सीख देता है। आज 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पांचवा दिन है। आज हम पूजा करते हैं माँ स्कंद माता की, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को।

श्रोताओं, माँ स्कंदा माता भगवान कार्तिकेय की माता है। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है।

श्रोताओं, दुनिया में माँ का प्यार एक ऐसा अनमोल उपहार है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जी हाँ, माँ हमारी खुशी में मुस्कुराती है और हमारे दुख में हमें सहारा देती है। आज अपनी माँ का आशीर्वाद अवश्य लीजिए।

श्रोताओं, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु हमें कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माँ स्कंद माता से प्रार्थना करें कि वो हमें हर कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस और सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दें।

जी हाँ श्रोताओं, माँ स्कंदा माता के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे प्यारे देश मॉरिशस में हमेशा अमन और भाईचारा बना रहे, हर बच्चा सुरक्षित रहे, हर परिवार खुश रहे और सभी धर्मों के लोग प्रेम और एकता के साथ जीवन बिताएं।

श्रोताओं, नवरात्रि के पांचवें दिन का रंग पीला है। पीला रंग खुशी, उम्मीद और रोशनी का प्रतीक है। आइए आज हम भी अपने अच्छे विचारों और प्यार भरे व्यवहार से दूसरों के जीवन में खुशियों की रोशनी लाएं।

जी हाँ श्रोताओं, माँ स्कंदा माता के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे प्यारे देश मॉरिशस में हमेशा अमन और भाईचारा बना रहे, हर बच्चा सुरक्षित रहे, हर परिवार खुश रहे और सभी धर्मों के लोग प्रेम और एकता के साथ जीवन बिताएं।

तो प्यारे श्रोताओं, मां स्कंदा माता की कृपा से आप सबके जीवन में सुख शांति और खुशहाली बनी रहे। अपनों से प्रेम कीजिए, सबका सम्मान कीजिए और अपने देश में एकता और भाईचारा बनाए रखिए। मैं उषा कौर आप लोगों से अनुमति लेती हूँ, मिलते हैं बहुत जल्द। जय माता दी और आप सभी को शुभ नवरात्रि।

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: सभी प्यारे श्रोतागण के सभी आदरणीय देशवासी लोगन के उषा के नमन बाती कृपया स्वीकार कर जा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आप लोगन के शानदार स्वागत बाते। दिन भर के थकान के बाद चला तनी रिलैक्स मूड में चला हुआ हमने के साथ बेहतर गीत वन चली और छोटा मोटा डायलॉग भी रही, तो ध्यान देवा जा पहल का गाना सुना।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: श्रोता लोग, जैसे कि जाने लजा नवरात्रि के पावन पर्व बा और ये आज हा पांचवी रात्रि, आज माता दुर्गा के पांचवा रूप स्कंद माता की आराधना होवेला। चला तो लोग के जीवन में माता रानी की कृपा खूबे बरसी और तो हर सब जोन चिंता वो सब समाप्त हो जाए।

0: भोजपुरी तड़का
1: साथी लोगन देखते देखते तो अक्टूबर महीना में चला ली सा और आज तो 15 तिथि हो गल बा और वे यानी खाली 77 दिन रह गल बा ये वर्ष के समाप्त हो के थोड़ा सुन मैथमेटिक का अच्छा है सेहत के लिए तुहर मनोरंजन के साथ साथ तुहर शारीरिक स्वास्थ्य एवं तुहर

0: भोजपुरी तड़का
1: हमने के संगतिया लोगन कुछ दिन से देश एगो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरलक। सभी लोगन चिंता में रहलन कि कब स्थिति में सुधार आए। ईश्वर की कृपा से और हमने के निस्वार्थ प्रार्थना से मामला में सुधार आए। हमने के जोन टापू है पूरा विश्व में स्वर्ग मानल जाला। तो चला अगला गीत सुना।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: चला श्रोता लोग नवरात्रि के अवसर पर खाली एक घंटा के भोजपुरी तड़का है जे पर संपन्न होता ढेर रात्रि तक दोस्ती निभाईला ए कर लिए एकदम ढेर आभारी है। ई बात पर तुहर से आज्ञा चाहत है। नमस्ते और शुभ रात्रि।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

कुछ आवाजें ऐसी होती है जो पहली धुन से ही पहचान में आ जाती है। किशोर कुमार की शरारत, मोहम्मद रफी साहब की दिलकश आवाज, लता मंगेशकर जी की मिठास और आशा भोसले जी का अनोखा अंदाज, हर आवाज अपने आप में एक पूरी दुनिया है। नमस्कार, मैं हूं नीलमणि और आपका स्वागत है सुनहरे पल में। आज हम याद करेंगे उन सदाबहार नगमों का जिनका जादू कई दशकों बाद भी बरकरार है।

कभी सोचा है कि कुछ गाने बार बार सुनने पर भी पुराने क्यों नहीं लगते? शायद इसलिए क्योंकि उनमें सिर्फ सुर और ताल नहीं बल्कि जज्बात भी बसे होते हैं। एक अच्छा गीत अपना बोलो धुन और गायक की आवाज से सीधा दिल तक पहुंचता है, और जब संगीतकार की धुन और गीतकार के लफ्ज एक साथ मिलते हैं तो एक यादगार नगमा जन्म लेता है। आपकी पसंदीदा गायक की आवाज कौन सी है हमें बताइएगा जरूर।

0: इतना याद रख दालिम तेरे बाबा की बाबा की बाबा की तेरे बाबा की महफिल में मैं भूख हड़ताल कर दूंगा भूख हड़ताल कर दूंगा भूख हड़ताल कर दूंगा।
1: लेकिन छोटी सी एक अर्ज है

किशोर कुमार का नाम आते ही कभी शरारती मुस्कान याद आती है तो कभी दिल को छू लेने वाला दर्द भरा गीत। उनकी गायकी में ऐसा अनोखा अंदाज था कि वो मस्ती भरे नगमे भी गा सकते थे और जज्बाती गीतों में भी जान डाल देते थे। और खास बात तो ये है कि किशोर दा ने गायकी के साथ अभिनय और निर्देशन में भी अपनी पहचान बनाई। चलिए अब उनके ही इसी जादुई अंदाज को अप्रिशिएट करते हैं। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

रेडियो के जमाने में गाने का इंतजार भी अपने आप में एक अनुभव हुआ करता था। पसंदीदा नगमा सुनने के लिए लोग रेडियो के पास बैठ जाते थे और कभी कभी गाने के बोल लिख भी लिया करते थे। आज संगीत सुनने के इतने साधन हैं, लेकिन रेडियो पर अचानक अपना पसंदीदा पुराना गीत सुनने की खुशी कुछ और ही होती है। क्या आपके घर में भी रेडियो सुनने की कोई खास याद जुड़ी हुई है? हमें बताना जरूर, हमारे साथ शेयर करना जरूर अपने

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। दुनिया में हर आवाज का अपना रंग है, हर धुन की अपनी पहचान है और हर गीत के पीछे एक कहानी है। 60s, 70s और 80s के नगमों ने हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया है बल्कि पीढ़ियों की यादों का हिस्सा भी बने। आज की महफिल में साथ देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं हूं नलमनी और आप सुन रहे थे सुनहरे पल। संगीत से जुड़े रहिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो मॉरिशस
0: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

0: एबीसी रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: एबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: किसी की जान को जाते हुए देखा है वो देखो।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।